जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा और नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्र है, महामाई जगदम्बा के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। इसी शुभकामना के साथ अपने घरों में माँ के नाम की ज्योत जलाएं, अपने घरों में माँ जगदम्बा के किसी भी रूप को स्वरूप को विराजमान करें और वो आपके जीवन से तमाम बुराइयां दुश्वारियां नाकामयाबियां सबको हर लेंगी और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, आपका स्वागत करता हूं सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूं वास्तु कृष्णा। नवरात्रों का पावन समय है दोस्तों, और नव दुर्गा, हमको ये समझना होगा कि 10 महाविद्याएं और नव दुर्गाओं में फर्क क्या होता है। मां दुर्गा के 9 स्वरूप है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग दिन पर इनकी पूजा होती है, जैसे कि भाव जो होता है इनका, शक्ति, भक्ति, साहस, तपस्या, ममता, कल्याण। नवरात्रि में पूजा का विशेष स्थान होता है इन 9 स्वरूपों का, है ना। 10 महाविद्याएं क्या है? आदि शक्ति के 10 दिव्य ज्ञानमय स्वरूप है। शाक्त और तांत्रिक परंपराओं में विशेष महत्व होता है इनका। प्रमुख क्या होता है इनमें? ज्ञान, चेतना, काल परिवर्तन, वैराग्य और समृद्धि। प्रत्येक महाविद्या की अपनी विशिष्ट उपासना की परंपरा है, एक तौर तरीका है, उनका एक पर्टिकुलर रूल है, जिस रूल से ही उनकी पूजा अर्चना होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि नव दुर्गा में ज्ञान या महाविद्याओं में भक्ति नहीं होती है, दोनों में ये सभी भाव मौजूद होते हैं। अंतर उनके स्वरूपों, धार्मिक कथाओं और उपासना की परंपराओं का है। यानी कि सिर्फ फर्क जो है वो इतना ही है कि उनको हम 10 महाविद्याओं के नाम से जानते हैं और उनकी खास तरह से ही पूजा होती है, उसके कुछ रूल है, कुछ नियम है। और 9 दुर्गाओं में जो हम आमतौर पर पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की किसी भी रूप की पूजा करें, उनको हम अपने परिवार के हिसाब से, जो हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं, उस हिसाब से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा 10 महाविद्याओं की उन शक्तियों के बारे में भी।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
2: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
4: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
6: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम शक्तियों को, भगवान को, ईश्वर को ढूंढने जाते हैं कहीं और, दूर से दूर किसी मंदिरों में चले जाते हैं, कहीं देवालों में शिवालों में चले जाते हैं और ढूंढ नहीं पाते कभी अपने मन के भीतर। भगवान बसे हैं हमारे मन के भीतर, तो जिस मन में पवित्रता नहीं है, शांति नहीं, सुकून नहीं, वहां भगवान नहीं होते, वहां माँ दुर्गा नहीं होते। तो हमें ये बात समझनी होगी कि हम मंदिरों में पूजा अर्चना करें, अपने घर में पूजा का स्थान बनाकर वहां पर करें, लेकिन जब तक मन में सुकून या देव शक्ति को बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, सबसे पहला रूल क्या बनता है कि हमारा मन पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। हम तैयार हैं क्या माँ दुर्गा को अपने जीवन में लाने के लिए, बुलाने के लिए? क्या हम सच में चाहते हैं कि हम अपने जीवन को रूपांतरित कर दें या ट्रांसफॉर्म कर दें? इसका क्या अर्थ होता है? पूरी तरह से बदल डालना। अगर हम अपने जीवन में खुश नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि कुछ बदल जाए जिंदगी में, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारे मन का पावन प्रेम। यानी अगर हम अपने दिल से एक बार भक्ति करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले मन पवित्र होना चाहिए, फिर हमारा जीवन पवित्र होता है, फिर हमारा जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। और जब किसी इंसान के जीवन में ये चेंज आने शुरू होते हैं, उसके बाद 10 महाविद्याओं की शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है। 10 महाविद्याओं के स्वरूप और रूप अलग अलग है, हर रूप कुछ अलग शक्ति लिए हुए है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ अगर आपके मन में सवाल है या कुछ आप कहना चाहते हैं, कोई भजन भी सुनना चाहते हैं, तो नंबर है 9639012111।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। देखिए, महामाई के अनंत रूप है, अनंत स्वरूप है। जब आप सनातन धर्म को थोड़ा गहराई से जाकर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी ना कभी एक नया नाम ऐसा सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेगा माँ दुर्गा का, जिसके बारे में पहले कभी आपने नहीं सुना था। ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं हमारे सनातन में। माँ दुर्गा के अनंत स्वरूप है, जैसे कि आपको पता है ब्रह्मांड शक्ति से चलता है, पावर से चलता है, और हमारे सनातन ने इसको महामाई का नाम दिया है। अंबे अंबा अंबालिका माँ, त्रिपुर भैरवी सुंदरी महामाई, नंबा पीतांबर, आप उनको किसी भी रूप में किसी भी नाम से पुकारिए, वो हमेशा आपकी सुनती हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिव्याहम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। महामाई जगदम्बा हर रूप में आपके ऊपर कृपा बरसाएं, इसी शुभकामना के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं आपके साथ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है नवरात्रों से, नव दुर्गाओं से जुड़ा हुआ, तब भी आपका स्वागत है। आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है ये कार्यक्रम, अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सनातन समझने की चीज है, मानने की चीज है, सनातन जानने की चीज है। सनातन में मां शक्ति के हर रूप

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत करता हूं सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। और दोस्तों, इस पूरी सीरीज में अगले 9 दिनों तक हम मां दुर्गा की बात करेंगे, मां शक्ति की बात करेंगे। अगर किसी भी इंसान को अपना जीवन बदलना है ना, उसको सच में शक्ति की आराधना करनी चाहिए, समझने चाहिए। पहले तो हमको फील आनी चाहिए भीतर से, अपने मन के अंदर से हमें ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि मां शक्ति है क्या, हमें समझना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, 10 महाविद्याओं की बात हम कर रहे हैं और नवरात्रों की भी बात हम कर रहे हैं। देखिए, नवरात्रों में 9 रूप होते हैं जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, ये तो हमेशा आप करते हैं। 10 महाविद्याओं की भी चर्चा अक्सर हमने की है, लेकिन इन 9 दिनों में तो जरूर करने वाले हैं। देखिए, 10 महाविद्याओं में आपने वो कहानी तो सुनी होगी जब राजा दक्ष ने मां पार्वती को और भगवान शिव को नहीं बुलाया और मां पार्वती, मां शक्ति

मां सती जो हुई थी उनके वहां पर चली जाती है, फिर भगवान शिव आते हैं और बाद में अलग अलग दिशाओं में 10 टुकड़ों में मां शक्ति के वो हिस्से पड़ते हैं। जहां जहां पर भी वो हिस्से पड़ते हैं उन उन जगहों पर अलग अलग शक्ति पीठ बन गए और वही 10 रूप बन गए और हर जो हिस्सा जहां पर गिरा उसी हिसाब से नाम पड़ा और अलग अलग मंदिर स्थापित हो गए समय के बाद। और आज उन्हीं जगहों को उन्हीं शक्ति पीठों को कुछ ऐसे नामों से जाना जाता है, 10 महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। माँ काली, दूसरी माँ तारा, तीसरी माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथी माँ भुवनेश्वरी, पांचवी माँ भैरवी, छठी माँ छिन्नमस्ता, सातवीं माँ धूमावती, आठवीं माँ बगलामुखी और माँ मातंगी और दसवीं है माँ कमला। ये कथा 10 महाविद्याओं के प्रकट होने के एक प्रसिद्ध धार्मिक व्याख्या कही जाती है, सुनने में आता है। तो शाक्त ग्रंथों और परंपराओं में उत्पत्ति के विवरण अलग अलग भी होते हैं, कई बार इनके ना कुछ और कहानियां भी मिल जाती हैं कि यहां पर प्रकट ऐसे हुई थी। कहानियां अलग अलग मिल सकती हैं लेकिन शक्ति अपने आप में यहां पर बहुत विकराल है। इन सभी के सभी शक्ति पीठों पर जो भी कोई गया है उसका जीवन बदल गया है। अगर आपने यहां से रहकर भी पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया तब आपको सच में पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी ये शक्तियां हैं और कैसे हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती हैं। जय माता की। सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो।

गुड मॉर्निंग, जय माता की। मैं हूं वास्तु कृष्णा, सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। दोस्तों, महामारी के ये पावन दिन चल रहे हैं। अंबे अंबा अंबालिका माँ, त्रिपुर भैरवी सुंदरी माँ, पीताम्बरा, किसी भी नाम से किसी भी रूप में पुकारिएगा उनको, किसी भी मंत्र से पुकारिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा। इतने सारे मंत्र हैं, जिसको भी आप पकड़ लेंगे वही आपके जीवन की नैया को पार कर लेगा। हर रूप हर कुछ देकर जाता है, फिर भी अगर कुछ पर्टिकुलर हमको कुछ चाहिए होता है ना, तो 10 महाविद्याओं में हम उसी रूप की आराधना करते हैं। जैसे अगर आपको जीवन में कामयाबी चाहिए, आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, आपको लोग परेशान करते हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, तब ऐसे में 10 महाविद्याओं के 8वें स्वरूप यानी माँ बगलामुखी की पूजा आपको करनी चाहिए। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभ है जिव्याहम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। या फिर आप इनका बीज मंत्र ह्लीम ह्लीम ह्लीम इसको भी जप सकते हैं। जीवन में कब क्या चाहिए, अगर आपको जीवन से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, आप परेशान हो गए हैं, तो अलग रूप की हमको पूजा करनी चाहिए। और माँ बगलामुखी आपको धन वैभव ख्याति सब कुछ देती हैं।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। नवरात्रों के पावन मौके पर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी जो शक्ति है ना, वो महामाई की है। देखिए, आपने ये तो सुना ही होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड को कौन चलाता है, शक्ति चलाती है ना। तो पावर, कोई यूनिवर्सल पावर है, कोई ऐसी शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड को चलाती है, ये तो साइंस भी मानती है। शक्ति के स्वरूप को मां के रूप में हमारे सनातन में दर्शाया गया है, यानी कि जो शक्ति है वो हमारी महामाई है। हम उनको जगदम्बा के नाम से, महामाई कालका के नाम से, कालरात्रि के नाम से, मां दुर्गा के नाम से, अनंत रूपों और स्वरूपों में हम उनको पूजते हैं। ऐसे ही महामाई जगदम्बा, मां त्रिपुर भैरवी सुंदरी, मां पीताम्बरा, अंबे अंबा अंबालिका, अनंत स्वरूपों में 10 महाविद्याएं भी हैं। इन 10 महाविद्याओं की चर्चा करेंगे इस भक्ति संगीत के बाद। सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, जीवन धारा सुप्रभात, सुनते रहिए।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति फिर से आपका स्वागत करता हूँ।

0: की प्रस्तुति।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ कही में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में, स्मार्ट एनजीओ की इस खास प्रस्तुति में, हम बात करने वाले हैं आजकल में होने वाले बुखार, लगातार वायरल, ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आजकल मौसम में ना बदलाव हो रहे हैं, लोगों को बहुत तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, ठंड लगने जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कुछ समय बाद दूसरा भी उसी बुखार की चपेट में आ जाता है। जिस परिवार में किसी एक बच्चे या व्यक्ति को यह बुखार होता है, फिर पूरे परिवार को हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह बुखार किस वजह से हो सकता है? क्या हर बुखार एक जैसा होता है और क्या हम अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं? सबसे पहले एक जरूरी बात, हर बुखार डेंगू नहीं होता। हर बुखार को सिर्फ वायरल कहकर छोड़ देना भी सही नहीं होता। बुखार के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मौसम और क्षेत्र के अनुसार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई तरह के वायरल और श्वसन संक्रमण भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बुखार होने पर सबसे जरूरी है लक्षणों को समझना, जरूरत पड़ने पर समय पर जांच कराना। अब बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले, डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मिचलाना, शरीर पर दाने जैसे लक्षण हो जाते हैं। लेकिन डेंगू में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खतरे के संकेतों को पहचानना सबसे जरूरी है। पेट में तेज दर्द हो, लगातार उल्टी हो, नाक या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, खून में उल्टी, मतलब खून की उल्टी होना शुरू हो जाए और काला मल आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सुस्ती आनी शुरू हो जाए, बेचैनी हो, सांस लेने में परेशानी हो, मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना होगा।

0: जी हाँ, सेहत से ही लाभ के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के कारण, लक्षण और उनसे बचाव का तरीका। सब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि डेंगू क्या होता है, अब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया भी मच्छर से फैलने वाला रोग होता है। इसमें बुखार में जो है ठंड लगती है, कपकपी होती है, सिर दर्द, उल्टी, शरीर में कमजोरी होती है। कई बार इसके लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे वायरल बुखार से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए केवल लक्षण के आधार पर खुद से बीमारी तय करना ठीक नहीं होता। और एक बीमारी होती है चिकनगुनिया। इसमें अचानक बुखार के साथ साथ जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, कभी कभी शरीर पर दाने भी हो जाते हैं और ये भी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। सवाल है कि जब बीमारी अलग अलग है तो बचाव कैसे करें। पहला और सबसे बड़ा कदम, मच्छरों को पैदा होने ही मत दीजिए। साफ सफाई रखिए घर में, घर के आसपास पानी मत जमा होने दीजिए, गंदगी मत जमा होने दीजिए। कूलर, गमले, छत पर पड़े हुए पुराने टायर, डिब्बे या कोई ऐसी चीज जहां पानी भरा हुआ है वहां पर आप पानी मत भरने दीजिए। ये ऐसी ही जगहों पर पनपते हैं। नियमित रूप से सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, जहां रुका हुआ पानी वहां मच्छर के पनपने का खतरा रहता है। और मच्छर ये दिन में भी काटते हैं। मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनिए, जरूरत के अनुसार मच्छरदानी का उपयोग कीजिए और घर की खिड़की दरवाजों पर जाली का इस्तेमाल कीजिए। सोते समय मच्छरदानी उपयोग जरूरी है। चिकनगुनिया और डेंगू के फैलने वाले जो मच्छर होते हैं, जो ये काटते हैं ना, ये जो मच्छर होते हैं ये रात में नहीं दिन में भी काटते रहते हैं, तो आपके घर में मच्छर ना हो इसका इंतजाम आप कीजिए। अब एक और जरूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को भी बुखार हो रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा।
1: स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

जी हाँ दोस्तों, यह है स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ। कई मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के बारे में, वायरल के बारे में। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बात मैंने आपको बताई और मैं एक और बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि घर में अगर किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार में एक से दूसरे को भी बुखार हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कई संक्रामक रोग व्यक्ति से व्यक्ति तक फैल सकते हैं, जबकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छर महत्वपूर्ण, मतलब आप समझे, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ये मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये व्यक्ति से व्यक्ति को फैल सकता है। इसीलिए बीमारी के फैलने का तरीका बीमारी के अनुसार अलग हो सकता है। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस में जुड़ी कोई समस्या आती है तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास सावधानी आपको रखनी है। मत जाइए उसके पास, या थोड़ी सी सावधानी रखनी है। साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार मास्क का भी उपयोग करना है। लगातार खांसी बन जाए, बुखार बन जाए, शरीर में दर्द बन जाए, डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए। आजकल इतनी तरह के बुखार हैं पता नहीं चलता किसको कब कौन सा बुखार हो गया है, और अगर एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाए तो आपने देखा होगा कि एक परिवार के सारे लोगों को हो जाता है। इसीलिए यह संक्रमण एक दूसरे से ना फैले इसका इंतजाम हमें तुरंत करना चाहिए।

आजकल होने वाले बुखार, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, इन सब की बात कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सुभारती, आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। यह खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, जब भी बुखार हो, पहले तो अपने आप डॉक्टर मत बनिए, खुद से पैरासिटामोल या कोई और ऐसी दवाई जो आजकल दुनिया भर की आती है, ये सब खुद से मत खरीद कर खाइए। अगर एक दिन से ज्यादा बुखार को, बदन दर्द को, जुकाम खांसी इत्यादि को हो गया है, डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए। जरूरत पड़ने पर अपने खून की जांच करवाइए, पता लगाइए कि बुखार कौन सा है, तभी उसका पूरा ट्रीटमेंट आप लेंगे। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास आने जाने में सावधानी रखें, उनका तौलिया अलग करें, खांसने के टाइम पर उनको मास्क दीजिए, उनका कपड़ा अलग रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पूरे परिवार को ये फीवर हो सकता है। आपने देखा ही होगा, परिवार में किसी एक व्यक्ति को होता है, फिर पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। बुखार में खुद एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं मत शुरू कीजिए। डेंगू की आशंका में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एस्पिरिन या एनएसएआईडी की दवाई, ये जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ भी खरीद कर खा लेना, ये मत कीजिए। दुनिया भर की जो आजकल पैरासिटामोल या अन्य प्रकार की जो दवाई आती है, मत लीजिए खुद से, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। बुखार को हल्के में नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करनी है। बुखार तेज हो, लगातार हो, मरीज बहुत कमजोर हो रहा हो, पानी ना पी रहा हो, बार बार उल्टी हो रही हो, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या असामान्य व्यवहार हो, खून आने जैसे लक्षण दिखाई दे, हालात तेजी से खराब हो रहे हो, तो तुरंत अस्पताल जाइए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं, अगर आपका मन है तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, लेकिन तुरंत जाइए। गंभीर मलेरिया में सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, दौरे, बहुत ज्यादा कमजोरी, पेशाब का कम होना जैसे गंभीर संकेत हो सकते हैं। बुखार अपने आप में बीमारी का नाम नहीं है दोस्तों, बुखार शरीर का एक संकेत है, असली कारण पता लगाना जरूरी है। यानी जो बुखार हमको होता है ना, वो कोई बीमारी नहीं, बुखार जिस वजह से हो रहा है उसका पता लगेगा जाके डॉक्टर के पास। इसीलिए इस मौसम में तीनों बातें हमेशा याद रखिए। पहला, मच्छर नहीं होने देना है पैदा। दूसरा, बुखार को नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा, खुद से दवाई लेने के बजाय जरूरत पड़ने पर डॉक्टर और जांच तुरंत कराइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। और इस संदेश को अपने परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि संचारी रोगों से लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती, ये लड़ाई हमारे घर से, हमारी गली से और हमारी जागरूकता से शुरू होती है। घर साफ रखें, पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचें और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सा सहायता लें। याद रखिए, सावधानी छोटी हो सकती है लेकिन उसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं हूं वास्तु कृष्णा, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई, सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, जिसके प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ।

नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रायोजक है, प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ, जिनके साथ मिलकर हम लंबे समय से आपको जागरूक कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है सेहत सही लाभ कई। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने आपको कई बीमारियों के प्रति जागरूक किया है। पिछले कई कार्यक्रम में हमने आपको टीबी नामक रोग के बारे में भी बताया है। टीबी एक जानलेवा बीमारी होती है, लेकिन अब इसका पूरी तरह से इलाज संभव है, ये भी हमने आपको बताया। दोस्तों, पिछले कई कार्यक्रम में हमने टीबी के बारे में विस्तार से बात की है। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवाई की जो प्रतिरोधी यानी कि एमडीआर टीबी का भी इलाज अब पूरी तरह से उपलब्ध है। लेकिन आज हम इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहें तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने की नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने की होती है। बहुत सारे मरीज इलाज तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलोअप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर बाहर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि इलाज को बीच में कभी भी रोकना नहीं चाहिए। दवाओं के संभावित रिएक्शन की अगर दवा से कोई परेशानी हो रही है तो निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद के लिए तुरंत तैयार रहती हैं।

0: की प्रस्तुति।
1: सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे ही टीबी की दवा शुरू होती है, कुछ ही महीने में, लगभग 1 से 1.5 महीने में मरीज को खांसी पूरी तरह से बंद हो जाती है, बलगम आने में भी कमी हो जाती है, बुखार आना भी बंद हो जाता है। ऐसे में मरीज को लगता है कि अब वो ठीक हो गया है, तो 1 से 2 महीने के अंतराल पर ही कई बार मरीज दवाइयां बंद कर देते हैं, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी के सलाह या मशवरा के खुद से ही दवाई बंद करके बैठ जाते हैं। और यहीं पर होती है सबसे बड़ी एक ऐसी गलती जो नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों, बिना एक्सपर्ट की सलाह के तो दवा बंद ही नहीं करनी चाहिए। और रही बात टीबी की जांच की और टीबी की दवाइयों की, तो पूरा कोर्स ही करना चाहिए जो तकरीबन 9 महीने तक लगातार चलता है। जो टीबी से संबंधित अधिकारी, डॉक्टर या निक्षय से संबंधित डॉक्टर्स या टीम होती है, उनके संपर्क में आपको लगातार बने रहना चाहिए। उनके जानकारी के बिना कभी भी दवा रोकना नहीं चाहिए।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर यह खास प्रस्तुति, जिसके हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं स्मार्ट एनजीओ। टीबी की जानकारी के बारे में आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, टीबी एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा हो सकती है, लेकिन इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया, दवा लंबे समय तक यानी कि पूरा कोर्स करना जरूरी है। बहुत से लोग अपनी मर्जी से दवा बंद कर देते हैं, जैसे ही महीने दो महीने में उनको आराम लगना शुरू हो जाता है। तो पिछले कई कार्यक्रमों के बाद, जैसा कि हम यहां पर चर्चा करते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों का हमारे पास फोन आता है, संदेश भी आता है। अधिकांश लोगों से

0: एक ही बात हुई और हमें पता चला कि टीबी का इलाज होता है, लेकिन इतने लंबे टाइम तक महीनों तक दवा खाना, लगातार खाते रहना आसान नहीं होता। और दोस्तों सच कहूं तो यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरा इलाज करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आज की जो हमारी ये चर्चा है, इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि आपको टीबी का इलाज शुरू करा देना चाहिए। जिन लोगों ने टीबी का इलाज शुरू करवा दिया और किसी भी वजह से उसको बीच में रोक दिया, तो अपनी जान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली। एक तो आपको टीबी हो गई है और टीबी का इलाज अगर आपने शुरू करा दिया दवा बीच में रोकने के बाद, टीबी और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है, बाद में मरीजों को ज्यादा समस्या हो सकती है। तो सभी श्रोताओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कभी अगर आपने कोई मरीज ऐसा देखा जिसको टीबी हुई और उसने दवाई बीच में रोक दी, चाहे किसी भी परेशानी से, मान लीजिए उसको दवा लेने में समस्या हो रही है, कोई रिएक्शन उसको नजर आ रहा है, या उसको आराम लग गया है, या वो काम पर किसी दूसरी जगह दूसरे शहर में लौट गया है और वापस दवा लेने अपने गांव में या कस्बे में नहीं आ सकता, ऐसे मामलों में भी लोग दवाइयां बंद कर देते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा हो तो सचेत होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी घटना के बारे में जो अब से कुछ साल पहले हुई। पास के ही एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक बच्चा था, रवि। उसको लगता था कि उसको फीवर रहता है, बुखार रहता है, वजन कम हो रहा था, खांसी लंबे टाइम से बनी हुई थी। जांच हुई तो पता चला कि उसको टीबी है। परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको समझाया कि चिंता की बात नहीं है। इलाज शुरू हो गया। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख वापस लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन 1.5 महीने के बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हो गई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते या दाने जैसे दिखने लगे, उसे मतली शुरू होने लगी, कभी कभी उल्टी भी शुरू होती। माता पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी कि दवा बंद कर दो, दवा से रिएक्शन हो गया है, दवा नुकसान दे रही है। लेकिन संयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारा ये कार्यक्रम सुना, सेहत सही लाभ कही, और एक पुराना एपिसोड था जिसमें हम बता रहे थे कि दवाइयां नहीं रोकनी चाहिए, जिसमें ये कहा गया, समझाया गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी डॉक्टर को जाकर बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। आपको पता ही है दोस्तों, हमारे आसपास के क्षेत्रों में सब लोग अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। कोई बीमारी हुई, बुखार हुआ, सरदर्द हुआ या कुछ भी समस्या हुई, खुद से ही जाकर मेडिकल स्टोर से कोई दवा मांग लेते हैं। तो हमारे यहां पर यह चलन बहुत बड़ा है कि हम खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले ही दिन बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकारी डॉक्टरों ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यक बदलाव किए, कुछ अतिरिक्त उपचार भी दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रित हो गई। आज रवि पूरी तरह से स्वस्थ है। सोचिए अगर उसके माता पिता ने डर कर दवा बंद कर दी होती तो बीमारी और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी। यानी समस्या दवा में नहीं है, बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको कभी भी टीबी की दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी। अगर कोई समस्या नजर आ रही है तो जाकर उन डॉक्टरों से, सरकारी टीम के पास आपको पहुंचना चाहिए, निक्षय टीम जो होती है, और बताइए अपनी परेशानी। यकीन मानिए आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। अब एक मरीज को क्या चाहिए? समय पर दवा, अच्छा खानपान, देखभाल, समझाने वाले कुछ लोग और बीमारी से छुटकारा। और ये सब करने में सरकार एक टीबी के मरीज की पूरी तरह से मदद कर रही है। खाते में पैसे भी आते हैं, निक्षय पोर्टली के माध्यम से खाने पीने का सामान भी आता है। सरकार आपको पैसा भी दे रही है, खाने का सामान भी मुहैया करवा रही है, पर जांच भी करवा रही है। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि टीबी को पूरी तरह से हराना है दोस्तों।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। टीबी के बारे में हम यहाँ पर बहुत देर से बात कर रहे हैं। टीबी का इलाज कितना ज्यादा जरूरी है, कितना आसान है, सुगम है। सरकार दवाई देती है, खाने पीने का सामान भी देती है, साथ ही साथ आपको उतने पैसे भी देती है कि आप कुछ प्रोटीन युक्त भोजन कर सकते हैं, है ना। निक्षय पोर्टली के माध्यम से आपको खाने पीने का सामान समय समय पर मुहैया भी कराया जाता है। मेरठ जिले में किस प्रकार से सरकार इस योजना को सुनियोजित तरीके से आपके लिए मुहैया करा रही है, आपकी मदद कर रही है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं टीबी रोग विभाग के साथ। आइए बात करते हैं।

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा
1: देती है? नहीं, बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए, और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: सर मैंने सुना कि 6 महीने तक या 9 महीने तक दो तरह से चलता, कैसे इलाज चलता है इसका?
1: वो पहले सिस्टम था जिसमें जो कोई नया रोगी आता था उसका इलाज 6 महीने चलता था। कुछ प्रतिशत लोगों में ये बीमारी जो है ना कुछ समय बाद उभर जाती है
0: जी,
1: तो उसको हम बोलते हैं कि रीट्रीटमेंट, यानी कि एक बार ट्रीटमेंट लेने वाला व्यक्ति अगर दोबारा ट्रीटमेंट पे आता है उसको रीट्रीटमेंट बोलते हैं
0: जी।
1: तब पहले नियम था कि उस रोगी को 9 महीने दवा खिलाई जाएगी, मगर अब ऐसा नहीं है, दवाइयां बहुत इम्प्रूव्ड हो गई हैं। अब किसी ने व्यक्ति ने पहली बार दवा खाई या दूसरी बार दवा खाई, इलाज 6 महीने ही चलता है, अब 9 महीने का सिस्टम

0: बार किसी व्यक्ति का टीबी का इलाज सरकारी आप लोगों की देखरेख में इलाज हो गया तो क्या फिर भविष्य में उसको दोबारा टीबी हो सकती है? नहीं,
1: संभावना है। उसको कोई लापरवाही रखेगा, अगर अपने खान पीन में ध्यान नहीं रखेगा, अपनी इम्यूनिटी को ठीक नहीं रखेगा, तो चूंकि उस बीमारी ने उसका घर देख लिया, आप ऐसे समझिए, मैं देशी भाषा में समझाता हूँ, उसके फेफड़ों पे कुछ इम्पैक्ट डाला, उसके थोड़े बहुत फेफड़े भी इसमें से कमजोर हुए, तो 2-4% व्यक्तियों में ये संभावना है कि वो बीमारी उनको दोबारा से अपने चपेट में ले।
0: अब सर ये बताएं कि अगर किसी घर में कोई टीबी का मरीज ना चाहते हुए भी हो जाता है तो उनको परहेज किन किन चीजों के रखने, खाने पीने का भी बताएं और

0: रहती हैं कि वो जो फैलने का डर था वो फैलने का डर काफी हद तक कम हो जाता है।
1: अच्छा।
0: फिर भी ऐसा कोई परहेज नहीं है, लेकिन जितना डिस्टेंस आप रख सके खासतौर से छोटे बच्चों से, खांसते छींकते थूकते हमेशा अपना मुंह बंद रखें, अगर थूकना भी हो तो किसी जो राख के अंदर ऐसे कोई बर्तन बना के रखें और उसको किसी प्रॉपर जगह पर डिस्ट्रॉय करें। ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। संभावना को देखते हुए कि टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, सरकार ने ऐसा भी औषधियां उपलब्ध करानी शुरू करी है कि अगर किसी भी परिवार में किसी व्यक्ति को फेफड़े की टीबी है तो उसके परिवार में 5 साल से छोटे बच्चे प्लस सभी बड़े एडल्ट जितने भी हैं सबको सरकार 6 महीने तक दवा खिलाती है अलग से।
1: अच्छा।
0: टीबी की प्रॉपर दवा नहीं होती, पूरा वो कोर्स नहीं होता, मगर वो बचाव का एक कोर्स होता है, बच्चे और बड़े सारा वो कोर्स करते हैं 6 महीने का।
1: अच्छा।
0: ताकि वो बैक्टीरिया उस बच्चों और बड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके।
1: अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिसको बीमारी हो गई है टीबी की वो तो दवाएं खाएगा, लेकिन पूरा परिवार भी थोड़ी कम डोज वाली दवाएं तो खानी है उसको।
0: वो बचाव के लिए एक कोर्स है, वो टेक्निकल पार्ट है, उस पर यहाँ बताने से कोई लाभ नहीं है, मगर वो सभी उस घर के रोगी जितने भी स्वस्थ हैं, अब तो सरकार ने नियम बनाया कि परिवार के जितने भी लोग हैं सबकी जांच होगी।
1: अच्छा।
0: सब लोग आइए अपनी जांच कराइए। जांच में 2 बातें होंगी, या तो वो सब ठीक होंगे या उनमें से कोई 1 या 2 व्यक्ति को टीबी का रोग हो सकता है।
1: जी।
0: तो जितने भी व्यक्ति टीबी के रोगी निकलेंगे उन सबको तो टीबी की दवा चलेगी सेपरेटली, वो एक टीबी का मरीज है गया।
1: जी।
0: लेकिन जितने भी व्यक्ति ऐसे होंगे बच्चों से लेकर बड़े तक जिनमें कोई रोग नहीं पाया गया टीबी का, उन सबको फिर टीबी से बचाव की दवाई चलाई जाएंगी पूरे 6 महीने तक।
1: 6 महीने तक।

ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
5: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313.

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं स्पेशल टॉक शो। हमारे गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार शर्मा के साथ। आप एक चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं और हमसे साझा कर रहे हैं यातायात सुरक्षा से संबंधित कुछ बातें। सड़कें चलने के लिए हैं साहब, जान गंवाने के लिए नहीं। और जिंदगी कोई वीडियो गेम नहीं है, यहाँ रिस्टार्ट का बटन मिल जाए। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि हम किस तरीके से जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जान हथेली पर रख करके घूमते हैं। तो हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं ट्रैफिक मामलों के एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी। आप चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं मेरठ से, और आपकी खास बात यह है कि आप ऑनरी रूप से हमारे देश के लिए अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आज आप यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारे कैंपस के बारे में बताइए और हमारे स्टूडियो के बारे में बताइए कि आपको कितना उत्साह आज फील हो रहा है।
1: धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल वंशी, आपको धन्यवाद आपकी प्यारी सी आवाज के लिए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर यूं ही बना रहे, क्योंकि आप माँ सरस्वती के मंदिर में ही विराजमान हैं। हम सभी जानते हैं कि मेरठ के अंदर एक बहुत बड़ा नाम उन बच्चों के लिए जो आज देश के लिए भावी युवा बनकर कहीं ना कहीं देश में अपना काम कर रहे हैं। सुभारती जो यूनिवर्सिटी है अपने अंदर एक अलग नाम रखती है, और मैं वाकई आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा। जो आपका लोगो है, आपका जो मोटो है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नो डाउट आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी मेरठ वालों से प्रणाम करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो विषय है सड़क और यातायात, इस विषय पर बहुत जरूरी बात करने के लिए मैं आपके बीच हूं।
0: तो इस स्पेशल विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं सुनील कुमार शर्मा जी के साथ हेड कांस्टेबल मिस्टर सुमित कुमार जी, कांस्टेबल मिस्टर हिमांशु गोड जी और कांस्टेबल लखपत यादव जी। सर, आप सभी का भी बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा टॉक शो रहेगा वो अवेयरनेस से भरपूर रहेगा, और जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनको काफी चीजें पता चलेंगी, यातायात नियमों के बारे में पता चलेगा, और साथ ही साथ क्या क्या सेवाएं हैं जिनसे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं इसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आपको भी इसी संदर्भ में कुछ बात करनी है तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा बहुत ही आसान सा संपर्क है, 9639012111 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप बिल्कुल मुझ तक पहुँचा सकते हैं लिख कर या कॉल करके। फिलहाल मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी के पास आते हैं जो कि चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं मेरठ से। सर, जैसा कि आज का ये समय है, वाहन इतनी ज्यादा संख्या में हमारी सड़कों पर दौड़ रहे हैं, तो ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़ा है वो ऑटोमेटिक बढ़ गया है, तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी वजह आपके हिसाब से क्या है?
1: एक शब्द की बात करूं तो लापरवाही
0: जी,
1: अवेयरनेस की कमी। हम लोग अगर कोई वाहन परचेज करते हैं तो हम वाहन परचेज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हेलमेट, हम क्यों भूल जाते हैं कि दोपहिया वाहन खरीदा है तो हेलमेट लेना है
0: जी।
1: हम चार पहिया वाहन खरीदते हैं, सारे फीचर्स देखते हैं, लेकिन क्या सीट बेल्ट वाला फीचर्स को हमने कभी ध्यान से देखा है? सबसे पहले हमें उसकी सेफ्टी, हमें सिक्योरिटी देखनी चाहिए। मोबाइल खरीदने से बाद एकदम हम उसको तो इंश्योर्ड करना चाहते हैं
0: जी,
1: उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो जीवन है, जो कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस जीवन के प्रति हम लोग पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होते।
0: जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अब सड़कों की बात कर ही रहे हैं तो हम देख पाते हैं कि सड़कों पर इतने ज्यादा नाबालिग हैं जो कि ड्राइव करते हमें दिखाई देते हैं, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की उनकी लापरवाही होती है, या फिर मैं कहूँ उनकी जो गाड़ियों की तेज रफ्तार होती है, या उनकी लापरवाही प्लस स्टंटबाजी जो वो करते हैं, ऐसे में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देख, सबसे पहले तो मैं कहूँगा गति से ही होती है दुर्गति
0: जी।
1: द्रुत गति का मतलब दुर्गति, इस बात को वो समझ सकता है जो 18 साल से ऊपर है। डॉक्टर्स का मत है कि 18 साल के बाद मैच्योरिटी बढ़ जाती है, और हम लोग किसी भी चीज के लिए तुरंत बुद्धि, हम लोग अपना जिस तरह चलना चाहें चल सकते हैं, लेकिन बच्चा 18 साल से पहले क्योंकि इन बातों के बारे में नहीं जानता, इसे दुर्घटना करता है। इसी को संज्ञान में लेते हुए अब एक ऐसा कानून नाबालिग के लिए बना है, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं, मेरठ वालियों से एक बार में पुनः कहना चाहूंगा, आप सभी समझ सकते हैं कि वो दोपहिया वाहन पर या चार पहिया वाहन पर अगर वो बच्चा है तो क्या उसने वाहन खरीदा है? जी नहीं, वो वाहन किसने दिया? उसके माता और पिता ने
0: जी।
1: उसी को ध्यान में रखते हुए एक नया कानून बना है और उस कानून के तहत यदि उस बच्चे को किसी भी ऑफिसर के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसके ऊपर 25,000 रुपए का शमन शुल्क यानी कि चालान की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा उस बच्चे को जो 18 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ के द्वारा मिल जाना है, लेकिन अब वो आरटीओ के द्वारा उसे लाइसेंस मिलेगा 25 वर्ष की आयु संपूर्ण होने के पश्चात।
0: अच्छा।
1: और उसके वाहन को भी नहीं छोड़ा गया है, उसके वाहन की आरसी 1 साल के लिए रद्द कर दी जाती है, यानी 1 साल के लिए वो वाहन सीज हो जाता है। अब बात आती है सबसे पीछे इसके वजह माता पिता की, क्योंकि उन माता पिता के द्वारा ही प्रदत्त किया है वाहन, इसी को संज्ञान में लेते हुए उनके दोनों माता पिता यानी पेरेंट्स को 3 वर्ष की नॉन अवेलेबल जेल का प्रावधान है।
0: अच्छा, तो अभिभावक जन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सही आयु में ही वाहन प्रोवाइड कराएं ताकि उन्हें उस चीज की वैल्यू भी पता चले और ऐसी जो सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण हो जाती हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिले। सर, बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगी। अभी हमने जिक्र किया था डीएल के बारे में कि जब ऐसा हो जाता है तो उसकी जो ड्यूरेशन है या उसका जो इयर्स है वो थोड़ा 18 से बढ़कर 25 कर दिया जाता है। इस विषय में मैं आपसे बातें करूंगी, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। अगर आपकी कोई फरमाइश है किसी गाने की तो हम बिल्कुल चला सकते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहिए?
1: मेरे प्यारे वतन।
0: वाओ, बहुत ही प्यारा सा गाना। तो दोस्तों, ये गाना हम इंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। और आज स्टूडियो में बहुत सारे गेस्ट भी हैं जो आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। फिलहाल ये गाना आपके लिए।
2: चल रहा है स्पेशल टॉक शो, चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी के साथ। लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं स्पेशल टॉक शो। हमारे गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार शर्मा के साथ। आप एक चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं और हमसे साझा कर रहे हैं यातायात सुरक्षा से संबंधित कुछ बातें। Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और आज का स्पेशल टॉक शो हो जाता है हमारा ट्रैफिक रूल से संबंधित। और आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट है हमारे साथ मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी। आप चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं, मेरठ से हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांस्टेबल मिस्टर सुमित कुमार जी, कांस्टेबल हिमांशु गोर जी और कांस्टेबल लखपत यादव जी। आप सभी से बहुत सारी बातें मैं कर रही हूँ, और ऐसी बातें जो जागरूकता के लिए और सेफ्टी के पर्पस से दोनों ही एंगल से बहुत ही अहम हो जाती हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो भी बच्चे नाबालिग होते हैं और अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है, तो उनके डीएल के प्रावधान में डिले देखने को मिलता है। तो पहले तो आप इसके विषय में बताएं, और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि कोई वाहन चलाएं तो क्या हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शंस हैं?
1: बिल्कुल है,
0: जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं।
1: बिल्कुल है, बस कमी वही अवेयरनेस की। वाहन दिलाने की अगर उनकी क्षमता है, वो कैपेबल है, तो उन्हें दिला सकते हैं, लेकिन वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए और उसकी गति 40 से ज्यादा ना हो। जो 40 की गति से नीचे चलने वाले ईवी वाहन है, उसके लिए RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं होती, सिर्फ आवश्यकता होती है तो हेलमेट की।
0: जी,
1: और ये हेलमेट भी बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि वो देश के भावी कर्णधार है, वो भविष्य उनके पास है, आने वाला कल है, तो उनके लिए जरूरी है कि उनके सर को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। उसी से रिलेट करते हुए हेलमेट की बात करते हैं, और हेलमेट में 6 लेटर्स आते हैं।
0: जी,
1: H फॉर हेड बचाता है आपका, E फॉर आईज बचाता है आपकी, L फॉर लिप्स बचाता है आपकी, M फॉर माउथ बचाता है आपकी, E फॉर ईयर्स बचाता है, एंड द T फॉर टीथ, और अगर हूँ 7वां और टंग भी आपकी बचाता है। तो 7ों चीजों को सुरक्षित रखना है, तो आप एश्योर कैसे होंगे कि जो आपने हेलमेट लगाया है कि वो सही है, कि एक्सीडेंट के बाद मेरे सर को बचा पाएगा या मेरे बच्चे को सर को बचा पाएगा? तो आइए उसी से रिलेटेड करते हुए बताता हूँ मैं आपको। 70 से 80 की गति तक अगर आपने दोपहिया वाहन को चलाते हैं, तो आप ISI मार्क वाला हेलमेट परचेज कर सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि हमारी गति 140, 150, 200 की हो चुकी है, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए अब एक नया मार्क आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं BIS मार्क, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और इस हेलमेट की ये क्वालिटी होती है कि अगर 2 किलो का हथौड़ा इसे पहनने वाले व्यक्ति के सर पर मार दिया जाए, फेंक दिया जाए नहीं, मार दिया जाए, तो भी उसकी बैकबोन भी, उसकी नेक भी, उसका सर भी पूर्णतया सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, बल्कि बच्चों को आदेशित करना चाहूंगा कि आप BIS मार्क हेलमेट पहने, और पीछे बैठने वाले को सबसे ज्यादा आवश्यक है हेलमेट लगाना, क्योंकि चालक को पता होता है कि दुर्घटना होने जा रही है, चालक के हाथ में हैंडल होता है, चालक के पैर नीचे फुटरेस्ट पर होते हैं, लेकिन पीछे बैठने वाला तो बहुत इजी वे में बैठा होता है, सॉफ्ट बैठा होता है, कुछ सोच में होता है, तो मैक्सिमम दुर्घटना में घायल होता है ड्राइवर, लेकिन पीछे बैठने वाला मौत का शिकार होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पीछे बैठने वाला जरूर हेलमेट लगाए, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर लगभग 1 साल में 5 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में 1,80,000 भारतीय इस लोक से परलोक जा रहे हैं। 80,000 ऐसे हैं जो नेशनल हाईवे पर ही अपने प्राण त्याग देते हैं, हर मिनट में एक्सीडेंट और 4th मिनट में मौत। इसीलिए जीरो एक्सीडेंट एम के लिए मैं आज सुनील कुमार शर्मा आपके बीच हूँ, क्योंकि मैं भी ये कहता हूँ, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।
0: सब बहुत जरूरी बातें आज आपने हमसे साझा की, और दोस्तों, मुझे भी इस बारे में थोड़ी सी बातें नहीं पता थी, लेकिन मैं भी यही कहूंगी कि जब भी आप दोपहिया वाहन चलाते हैं, तो इस चीज को एश्योर कीजिए कि आपकी हेलमेट की जो क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं, या फिर वो एक फॉर्मेलिटी के लिए आप पहन रहे हैं, इस विषय पर आपको सोचना जरूर चाहिए। दूसरा, अगर आपके पीछे कोई बैठकर जा रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी भी आपके ही हाथ है, तो इसीलिए 1 नहीं 2 हेलमेट जरूर खरीदें, और ध्यान रखें वो BIS मार्क वाले हों, इससे हमारी सिक्योरिटी थोड़ी सी एश्योर हो जाती है।
2: चल रहा है स्पेशल टॉक शो चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी के साथ। लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: कभी तो हंसाए।
1: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।

0: नमस्कार, मेरा नाम शरद है, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं आरजे वंशी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनका रेडियो प्रोग्राम आजाद हिंद रेडियो डेली सुनता हूँ। मुझे उनका कंटेंट काफी पसंद है। मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे काफी अच्छी वाइब्स आती है, काफी रिफ्रेशिंग फील होता है। मैं उनसे अपने थॉट्स डिस्कस करता हूँ, रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आता है। मुझे काफी अच्छा लगता है उनसे बात करके, मुझे उनकी आवाज काफी अच्छी लगती है। कई बार उनसे बात करके ऐसा ही फीलिंग आती है जैसे आप अपने किसी घर के सदस्य से बात कर रहे हैं। मैं काफी टाइम से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैं रहने वाला मेरठ का ही हूँ। उनसे बातें करके मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी सुनिए उनका प्रोग्राम, उनसे जुड़िए, उनसे बात कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले एक बार उनसे बात कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आएगी।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले।

0: हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
3: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं स्पेशल टॉक शो। हमारे गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार शर्मा के साथ। आप एक चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं और हमसे साझा कर रहे हैं यातायात सुरक्षा से संबंधित कुछ बातें। सर, जैसे कि आज के टाइम में अगर

0: के रूप में आपका आधार कार्ड, और उसके अलावा आपसे कुछ सवाल करेगा सड़क संकेतकों से रिलेटेड, रोड साइंस के बारे में आपसे जानकारी लेगा, और उनके जानकारी के अगर आप सवाल का जवाब दे देते हैं तो आपको 3 मिनट की एक वीडियो देखने के लिए भेजेगा। अच्छा। और वो 3 मिनट की वीडियो आपको पूरी देखनी ही पड़ेगी। अगर आपने उसको बीच में आगे पीछे करना चाहे, स्किप करना चाहा, तो आपको वो सारा का सारा दोबारा से करना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वो वीडियो देखना अति आवश्यक है। साथ ही वो आपसे 350 रुपए डिमांड करेगा, जो ऑनलाइन आप उसे पे करेंगे, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग प्राप्त हो जाएगा, जो आपको 1 महीने से 6 महीने तक वाहन चलाना सीखने के लिए मिलता है। लोगों को इस बात का एक संदेश देना चाहूंगा, वो समझते हैं लर्निंग लाइसेंस मिल गया तो मैं वाहन चलाने लगूंगा, ऐसा नहीं है। आप अगर वाहन चलाना सीखते हैं तो, अगर चार पहिया वाहन है तो आपके साथ वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा है, जो जरूर बैठा है, जो को बैठना अनिवार्य है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस 3 वर्ष पुराना होना अनिवार्य है। और दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति जिसके पास 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, 1 महीने से 6 महीने तक आप उसे सीख सकते हैं। हाँ, अगर आप वाकिफ हैं, जानते हैं, तो आप 31वें दिन दोबारा से आप उसी साइट पर जाइएगा parivahan.gov.in, और उस पर जाकर अब आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे ऑनलाइन, और उस फीस को देने के बाद आपको एक स्लॉट मिलेगा और RTO ऑफिस आपको बुलाया जाएगा, जहां पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, आपका बायोमेट्रिक भी होगा और आपको वाहन चलाकर दिखाना पड़ेगा। और अब आपको लखनऊ से ही ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर लगभग 15 से 20 दिन में पहुंच जाएगा, जो अगर बच्चों की बात करें 18-20 साल के, तो उनके लिए 25 वर्ष के लिए मिल जाता है।
1: तो दोस्तों, अगर आप भी DL के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप परिवहन सेवा पोर्टल पर जा सकते हैं, और बहुत ही आसान सा इसका प्रोसीजर है, सर ने अभी बताया, इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद आई बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: चल रहा है स्पेशल टॉक शो, चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी के साथ, लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी

0: Soli, Goa and even Andaman, starting at just 12 lakhs. For more details, contact us at 9999126127.
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल

हेलो मित्रों, नमस्कार। आज बात करते हैं आजाद हिंद रेडियो की। आजाद हिंद रेडियो में एक आरजे हैं, आरजे वंशी, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर नेचर की हैं। मैं रेगुलरली आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के द्वारा जुड़ा हुआ हूं। मैं शिवम ऋषिकेश से बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़िए और यह ऋषि आवाज आरजे वंशी को सुनिए दोपहर 11 से 1 मंडे टू सैटरडे आजाद हिंद रेडियो, जिसे सुन के लगता है कि हाँ, कुछ वो पुरानी यादें से हम जुड़े हैं जो हम रेडियो से पहले जुड़ते थे। आज वही बात आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आरजे वंशी के द्वारा हमें उसी लगाव से मिलाती है जो लगाव हम

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं स्पेशल टॉक शो। हमारे गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार शर्मा के साथ। आप एक चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं और हमसे साझा कर रहे हैं यातायात सुरक्षा से संबंधित कुछ बातें। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजी वंशी और आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक नियम के बारे में और साथ ही साथ जान रहे हैं कुछ ऐसी जरूरी बातें जिसको अगर आप जान लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सुरक्षित कर रहे होते हैं। हमारे साथ इस स्पेशल टॉक शो में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी। आप चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं और आपकी खास बात यह है कि आप ऑनरी रूप से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं पिछले 15 से 16 वर्षों से। सर, बहुत बहुत बधाई पहले तो इस चीज के लिए, क्योंकि अपने आप में ये इनिशिएट करना और जन सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इस तरफ आपका रुझान कैसे गया, मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि आप इधर अपनी सेवा प्रदान करने की कोशिश की?
1: बहुत ही प्यारा आपका वंशी ये सवाल है जो कई बार मैं खुद अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कैसे एक चीफ इंस्ट्रक्टर बन गया।
0: जी जी।
1: उसके पीछे कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
0: नहीं होता।
1: तो मुझे सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आप सभी को एक मैसेज कि ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात अगर हो तो उसको अपने माइंड में रखें, इग्नोर ना करें। मैंने कहीं एक दुर्घटना सड़क पर देखी
0: जी।
1: एक महिला का हाथ कट के अलग दूर पड़ा हुआ था। उसको मैंने इग्नोर भी कर दिया, घर भी चला गया, लेकिन अचानक कहिएगा उसी दिन एक ऐसी किताब मेरे सामने आ गई जिसके अंदर सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं का एक विभत्स आंकड़ा मेरे सामने था। अब वो दोनों चीजें एक साथ जब मेरे साथ जुड़ी तो मैं मजबूर होकर, जैसे अभी आपने कहा कि जान ना चाहिए, तो जब जान जाओगे तो अपनी जान के विषय में भी आपको पता लग जाएगा कि जीवन नहीं मिलता दोबारा। ये जान अनमोल होती है, उस माँ से पूछेगा जिसने आपको पैदा किया। 170 हड्डियां टूटने का दर्द बर्दाश्त करती है एक माँ जब आप अवतरित होते हैं इस धरा पर। आप ऐसे नहीं धरे गए यहाँ पर, इसलिए आप

0: अपने बारे में जरूर सोचिएगा कि स्वस्थ रहें, रोकें दुर्घटना, यही हमारा बल होगा। और यदि सुरक्षित आ जाए अपना, तभी सुरक्षित कल होगा।
1: सर, जब आपने शुरुआत की होगी तो कई मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि अब नहीं करना, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ?
0: मेरे साथ तो शुरू में 2011 से 13 तक लगातार लोग मुझ पर हंसते थे। मैं कहीं पर भी सेमिनार लेके जाता था, लोग बाद में मेरे पीछे हंसा करते थे, देखो चला गया पागल। लेकिन कहते हैं कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कराता कौन है। मैं कितना भी सुनता था लेकिन मुस्कराता रहता था। और इसी श्रृंखला में मुझे 2013 में मुझे RTO ऑफिस से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे खुद एक ऐसा इन्विटेशन मिला कि साथ आप काम करते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा, हमारा भी नाम होगा और आप काम करना ही चाहते हैं। जब ही से आलोक सिन्हा सर यहाँ कमिश्नर हुआ करते थे
1: जी,
0: उसी टाइम से मेरे साथ ये सिपाही मेरे साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि ड्रेस का बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन पड़ता है।
1: जी जी
0: अगर किसी स्कूल में हम सेमिनार लेते हैं तो मेरी ड्रेस से घर तक नहीं बात जाएगी, लेकिन उस घर तक बात जाने के लिए ड्रेस की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं सुमित जी हों, हिमांशु हों, लखपत हों, इन सबका धन्यवाद देता हूं। और सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा आज के हमारे मेरठ के SP ट्रैफिक महोदय, पुलिस अधीक्षक यातायात, जो वाकई बहुत ही तन्मयता के साथ काम करते हैं, बड़े डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। आज राजेश कुमार श्रीवास्तव जी जिनके निर्देशन में आज हम पूरी तरह काम कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत बधाई सर आपको। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब यूनिफॉर्म आपके पास होती है तो पहले नंबर पर तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, जो कि आप पहले से ही निभा रहे थे। लेकिन समाज में एक अपना सिग्नेचर बनाने के लिए यूनिफॉर्म की जरूरत जरूर पड़ती है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे सर से कि PUCC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट क्या होता है, और इसका अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं है तो क्या इस पर चालान है और कितना आपको भुगतान करना पड़ सकता है। सर, इस विषय में थोड़ा बताइए।
0: बिल्कुल, PUCC सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं नेशन फर्स्ट
1: जी,
0: और मैं भी एक ही बात लिखता हूँ, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि। तो ये PUCC उसी से रिलेट करता है।
1: अच्छा,
0: हम लोग AQI की बातें करते हैं लेकिन AQI के बारे में, वायु गुणवत्ता के बारे में सिर्फ बात करते हैं और भूल जाते हैं। हम उसी AQI की वजह से NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से ये चालान की प्रक्रिया होती है। एक ऐसी एजेंसी जो ये चाहती है कि माँ भारती को हम लोग पर्यावरण से पूरी तरीके से मालामाल कर दें, प्रदूषित ना करें, दूषित ना करें, उसी को संज्ञान में लेते हुए ये RTO ऑफिस की तरफ से ही ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जिसकी ना होने पर आपकी जो चालान की धनराशि है वो 10,000 रुपए है।
1: अच्छा।
0: जबकि आपको जो सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है वो दुपहिया का लगभग 40 से 50 रुपए का और 4 पहिया का लगभग 90 से 100 रुपए का प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा आपकी तरफ से माँ भारती के प्रति आपकी निष्ठा पर सवाल है, इसलिए इसकी धनराशि भी चालान की 10,000।
1: बहुत सही बात आपने कही कि माँ भारती की सुरक्षा करना हमारा ही दायित्व बनता है, तो इसकी धनराशि होनी भी चाहिए। मुझे आपके इस बात पे बिल्कुल कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं। सर, मैं जानना चाहूंगी HRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में भी। हालांकि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं होगी, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए।
0: बेशक, आप सभी श्रोताओं का एक बार मैं फिर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और बताना चाहूंगा वंशी की तरह आपको भी कि ये HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो अब से पहले हम अपने वाहन का कोई भी जो नंबर हमें प्राप्त होता था हम लिखवा लिया करते थे किसी पेंटर से
1: जी,
0: लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होता था, दूसरे पेचों से कसा होता था। हमने कोई भी कांड करा, हमने बदल दी प्लेट और लगा दी, लेकिन अब उसके अंदर रिपीट से लगाई जाती है। जो कंपनी वाले, जो कंपनी से गाड़ी आती है वही कंपनी वाले लगाते हैं, रिपीटेड यानी कि वो उतर नहीं सकती।
1: अच्छा।
0: और उसके साथ उसमें एक बार कोड होता है, आगे पीछे की नंबर प्लेट्स पे ग्रूव नंबर होते हैं, उभरे हुए नंबर होते हैं, जिसपे इंडिया इंडिया इंडिया इंडिया ब्लैक पर लिखा होता है, जिसकी वजह से अगर हम मोबाइल उसको जोड़ते हैं उसके साथ तो उस बार कोड से उसकी अगली पिछली सारी हिस्ट्री आ जाती है। इसलिए वो अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है HSRP, और इसके ना होने पर जो आपको चमन शुल्क यानी धनराशि का भुगतान देना पड़ता है वो है 5,000 रुपए।
1: तो दोस्तों, अगर आपको अपनी जेब जो है वो बचानी है और सुरक्षित रखनी है तो सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है और उससे ज्यादा जिंदगी बहुत अमूल्य है, इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना आपका दायित्व है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू।
2: चल रहा है स्पेशल टॉक शो, चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी के साथ, लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

देवंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, स्पेशली आपका, मतलब आर देवंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सुन रहे हैं स्पेशल टॉक शो। हमारे गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार शर्मा के साथ। आप एक चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं और हमसे साझा कर रहे हैं यातायात सुरक्षा से संबंधित कुछ बातें। यदि सड़कों पर सुरक्षित जीवन पाना है तो यातायात के नियमों को खुलकर निभाना है। जो लोग करें सड़क के सुरक्षा नियमों का सम्मान, फिर ना होगी दुर्घटना और ना ही होंगे हम कभी परेशान।
1: क्या बात?
0: वाहन धीमा चलाएं, जीवन सुरक्षित बनाएं। घर सुरक्षित जाना है तो यातायात नियमों को अपनाना है। और याद रहे दोस्तों, सज्जन व्यक्ति वही कहलाए जो सड़कों के सभी सेफ्टी नियम अपनाए। और साथ ही साथ वाहन हमेशा धीमी रफ्तार से ही चलाएं, अपना और लोगों का कीमती जीवन बचाएं। जन जन का ये नारा सड़क सुरक्षा नियम को अपनाना है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और आज के इस स्पेशल टॉक शो में हम बात कर रहे हैं यातायात नियमों के बारे में। इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी। और आपको बता दूं कि आप चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं। बहुत सारी बातें सर से हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अगर अभी आपने ट्यून इन किया है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी बातें आज हम कर रहे हैं जिसके बारे में आपको मालूम जरूर होना चाहिए और आपकी जीवन की कैसे सुरक्षा आप कर सकते हैं सड़क पर चलते वक्त, तो कुछ ऐसी बातें आज हम कर रहे हैं। सर, हमारे मेरठ के अंदर ITMS क्योंकि लागू हो चुका है, इस विषय पर थोड़ा बताइए लोगों को।
1: लोगों को पता तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है
0: जी।
1: और यह अल्प ज्ञान जो होता है, अभिमन्यु की तरह अचानक अपनी जान को खुद को देना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: सबसे बड़ा योद्धा होकर भी अगर आज हमारे बीच नहीं है, अकाल मृत्यु का अगर वो कारण बना तो उसके पीछे वजह थी उसका अल्प ज्ञान। इसीलिए मैं ITMS के बारे में बताना चाहूंगा, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
0: जी।
1: जो ऑटोमेटिक आपका चालान कर देता है आपकी किसी भी गलती पर। अगर आप किसी यातायात के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं या उसका किसी भी तरीके से उल्लंघन करते हैं तो अपने आप चालान हो जाता है, जो CCTV कैमरास के द्वारा होता है। और इसको वॉच करने के लिए हमारे मेरठ के अंदर नगर निगम के अंदर हमारी पूरी टीम बैठी होती है। मेरठ के अंदर जितने भी CCTV कैमरास लगे हैं वो वहीं से पूरी कनेक्ट होते हैं।
0: अच्छा।
1: और ये लखनऊ से कनेक्ट होता है, इसका जो चालान होता है ये लखनऊ के द्वारा होता है। लेकिन किसी वजह से किसी आदमी, कोई व्यक्ति, वाहन चलाने वाला ये समझता है कि मेरा ये चालान गलत हुआ है
0: जी,
1: तो वो उसको हमारे SP ट्रैफिक महोदय के पास जाकर एक एप्लीकेशन के साथ चैलेंज कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, उसकी बात सुनी जा सकती है।
0: तो दोस्तों घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मशीन है तो कुछ गलत ना करे। अगर आपकी ऐसी शंका है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, चालान आपका गलत तरीके से काट दिया गया है, तो इसका भी प्रावधान है, आप बिल्कुल इसको चैलेंज कर सकते हैं। सर, मैं अभी जानना चाहूंगी कि जैसे ई चालान हमारा होता है, और क्या क्या ऐसे दस्तावेज होते हैं जरूरी जो आपके पास होने चाहिए हमेशा, जिसके अनुपलब्धि में चालान कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसके विषय में बताएं।
1: देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज रखना जरूरी है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस
0: जी।
1: वो आपके पास एक पूरी पेपर्स के रूप में होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास बाकी पेपर्स नहीं भी होते हैं, ये आपके पास डिजी लॉकर के अंदर है
0: जी,
1: तो वो मान्य होते हैं।
0: अच्छा।
1: और उस लेकिन उस डेट से पहले के वो पेपर्स होने चाहिए। अगर आपका 10,000 का 20,000 का भी चालान हो गया है तो आप सीधे विंडो पर जाइएगा, जो हमारे यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफिस है वहां पर जाइएगा, अपने पेपर्स उस डेट से पहले के दिखाते अगर हैं तो आपको मात्र ₹100 का चालान भुगतना पड़ता है और आपका बाकी चालान माफ कर दिया जाता है।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर, अभी हम बात करेंगे राहवीर योजना के बारे में। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग हेल्प के लिए गुहार लगा रहे होते हैं, और हम और आप कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं लेकिन वो डर जाते हैं कि क्या किसी कानूनी कार्रवाई में हम फंस सकते हैं या क्या हमें मदद करनी चाहिए। मतलब एक जो संकोच है मदद करने से पहले, वो किस तरीके से, क्या हमारे पास सरकार ने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं कि जो हेल्पर है वो एटलीस्ट अपने इस हाथ को रोके ना, थामे ना और हेल्प करे।
1: अगर आप अखबार पढ़ते हैं, आप TV देखते हैं, और अगर आप हमारे सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को सुनते हैं
0: जी,
1: या हमारे UP के मिनिस्टर जो है हमारे आप दयाशंकर जी को सुनते हैं, तो भी आपको पता लग जाएगा रूटीन में डेली बेसिस पर लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इस बात के लिए कि सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अगर हम बचा लेते हैं तो लगभग 1,00,000 व्यक्तियों को बचा सकते हैं हम एक साल के अंदर
0: जी।
1: इसी को रिलेट करते हुए इसको संज्ञान में लिया गया 2017 में और 2017 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम गुड सैमरिटन या नेक आदमी रखा गया और उसके तहत उस व्यक्ति को विक्टिम को बचाने वाला जो सड़क दुर्घटना में घायल है उसको बचाने वाले को 5,000 रुपए की धनराशि हमारे जिलाधिकारी महोदय के हाथों से मिलती थी, साथ में एक सम्मान पत्र मिलता था गुड सैमरिटन के नाम से।
0: अच्छा।
1: लेकिन 2025 में इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया।
0: अच्छा।
1: ये देखा गया कि शायद प्रोत्साहन राशि कम है, लोग इसकी तरफ कम आगे बढ़ रहे हैं, उसी को संज्ञान में लेते हुए अमेंड किया गया कि अब उसको 5,000 को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया और उस नेक आदमी को एक नाम दिया गया राहवीर का और योजना को नाम दिया गया राहवीर योजना, यानी कि उसके तहत अगर आप उसे बचाते हैं तो आपको 25,000 रुपए मिलते हैं और एक वर्ष में आपको 4, 5, 6 बार भी अगर बचाते हैं तो भी आपको प्राप्त होंगे 25,000। पर इसके अलावा कोई भी डॉक्टर किसी भी तरह से आपका नाम अगर आप चाहोगे तो लिखेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं लिखेगा। कोई भी पुलिस का ऑफिसर अगर आपसे बात करना चाहता है तो बिना वर्दी के आपके बताए हुए स्थान पर आएगा
0: जी।
1: इसके अलावा हो सकता है आपको सीएम महोदय भी आपको लखनऊ में बुला के सम्मान दें, पॉसिबिलिटीज है आपको सेंट्रल से भी बुलावा है वहां पर भी आपको नितिन गडकरी जी की तरफ से इनाम मिले, क्योंकि प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। क्योंकि 1,80,000 भारतीय जो मरते हैं एक साल में, उसमें से 80,000 तो जो NH पर मर गए वो तो बचाए नहीं जा सकते, लेकिन 1,00,000 तो वो है जो रजिस्टर्ड है जो घायल होने के बाद मरे हैं, तो उनको बचाने का दायित्व प्रत्येक भारतीय का है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
0: बिल्कुल।
2: चल रहा है स्पेशल टॉक शो, चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी के साथ, लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
2: क्या कर रही हो मतलब रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
1: रात का बासी पानी?
2: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
1: तुम्हें पता भी है देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर है, और तुम कहती हो बासी पानी? एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
2: तो फिर कैसे किया जाए?
1: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
3: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
4: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
6: Hello, hello, namaste. This is Esther from Aizawl, Mizoram. I've been listening to Azad Hind Radio after knowing that one of my closest and dearest friends from my college, Vanshika, also known as RJ Banshi, is on the show. Whenever I tune into her show through their mobile application, sometimes I feel like it takes me to another places, dimensions or universe. My stress is gone totally after hearing Vanshika's, this RJ Vanshi's beautiful and soft voice, and her content that she delivers is always, always amazing. And it keeps getting better and better every day. Sending love from Mizoram. I hope you keep listening to RJ Vanshi. So much love for her. Love you all.

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल।

0: Subharti Cancer Hospital. To know more, call now 9639010313.
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
3: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सुन रहे हैं स्पेशल टॉक शो। हमारे गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार शर्मा के साथ, आप एक चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं और हमसे साझा कर रहे हैं यातायात सुरक्षा से संबंधित कुछ बातें। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो दूसरे की मदद करे, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि राहवीर योजना एक हमारी सरकार ने चलाई है ताकि जो विक्टिम्स की हेल्प करता है उसके लिए भी हम फिनेंशियली उसको अप्रिशिएट कर सकें, लेकिन क्या इसका प्रावधान है, क्या प्रोसीजर है कि आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका कोई प्रोसीजर भी है?
1: आप जैसे ही डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं, या हमारे यहाँ पर SI की टीम है, सब इंस्पेक्टर्स की बहुत बड़ी टीम है, जिस थाने में भी जिस अंतर्गत वो दुर्घटना हुई है वो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्टर्ड हो जाता है।
0: अच्छा।
1: जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वहां पर भी आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि PM राहत योजना के लिए 25,000 उसे तो मिल गए जिसने बचाया है, अब लेकिन जो बचने वाला है क्या वो बच पाया, ये जिम्मेदारी कैसे ली जाए
0: जी।
1: उसी को संज्ञान में लेते हुए एक बहुत बड़ी योजना, वाकई बड़ा अच्छा लगता है जब इस बात को बताता हूँ, कि 1,50,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज उसको एक हफ्ते तक प्राप्त हो सकता है। यानी कि किसी भी तरह से उस मरणासन्न व्यक्ति को जो घायल है उसको ऊपर और नीचे का फर्क सिर्फ इतना ही है, अगर आपने बचा लिया तो जीवन, नहीं बचाया तो मृत्यु।
0: जी सर, जैसा कि अभी मेरा सेम ही सवाल रहेगा कि PM राहत योजना के लिए अगर हम चाहते हैं उस अमाउंट को अवेल करना तो उसका क्या प्रोसीजर है?
1: क्योंकि ऑटोमेटिक डॉक्टर्स के द्वारा उस व्यक्ति को विक्टिम है, हो सकता है वो होश में ना हो
0: जी,
1: इसलिए उसको ऑटोमेटिक वो प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी डॉक्टर के, किसी भी प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी जा सकते हैं आप, और कुछ नहीं तो 112 डायल कर लीजिए
0: जी,
1: ये भी याद ना रहे तो 1073 हमारा नंबर है ट्रैफिक पुलिस का, सब टोल फ्री है, आपको एकदम सहायता मिलती है। कुछ भी नहीं कर सकते तो आप इतना तो कर सकते हैं, कोई 3-व्हीलर आ रहा है, रिक्शा वाला आ रहा है, किसी राह चलते को भी रोक सकते हैं, ओवरऑल उसे बचाने के दायित्व को निभाएं और एक अपने आप को राहवीर के नाम से सुशोभित करें।
0: बहुत अच्छी आपने बात बताई। तो दोस्तों, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आपके आसपास आप देखते हैं ऐसा कुछ कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसको मदद की जरूरत है, तो बिल्कुल उसके पास जाएं और अपना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। फिलहाल हम बढ़ेंगे इस गाने की ओर और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं और अभी ये सफर हमें तय करना है मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी के साथ, जो कि चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं और बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारी आज हमसे साझा कर रहे हैं। फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद लौटेंगे थोड़ी सी देर में आपके पास।
2: चल रहा है स्पेशल टॉक शो, चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी के साथ, लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी RJ वंशी के साथ।

0: अम्मा मियाँ पान खा के तो मजा ही आ गया। अब एक काम करो, एक बढ़िया सी सिगरेट दे दो जिसे पी के कलेजे में ठंडक पड़ जाए।
1: अरे क्या बात है मियाँ, लगता है 20-25 लाख वाला बीमा करवा लिया है या लॉटरी लग गई है।
0: नहीं भैया, बीमा तो नहीं कराया है, पर काहे?
1: आप जिस तरह से तंबाकू और सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं उससे जल्द ही आपके घर में भयानक मेहमान आने वाले हैं।
0: भयानक मेहमान कैसे होते हैं भैया?
1: अरे जैसे कैंसर, कुमार, दमा रानी और टीबी।
2: जी हाँ, पान मसाला खाना व धूम्रपान करना जानलेवा है। इससे आपको कैंसर, अस्थमा, चर्म रोग, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग और टीबी हो सकता है। तो आज ही एक कदम बढ़ाएं अपनी सेहत की तरफ। आओ ये संकल्प करें, धूम्रपान को बंद करें।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 शुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जीआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं स्पेशल टॉक शो। हमारे गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार शर्मा के साथ। आप एक चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं और हमसे साझा कर रहे हैं यातायात सुरक्षा से संबंधित कुछ बातें। वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजीवंशी। और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी। आप चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं, मेरठ से हैं। और खास बात ये है, और बार बार मैं इस चीज को मेंशन इसलिए करना चाहूंगी कि ये हर जन का दायित्व है, लेकिन आज हमारे साथ आप मौजूद हैं तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप ऑनरी रूप से लगभग पिछले 15 से 16 वर्षों से इस चीज में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। सर, जैसा कि अभी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, ट्रैफिक नियमों के बारे में बात की, ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में बात की या रोड सेफ्टी के बारे में बात की, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि मौसम बरसात वाला चल रहा है और आगे सर्दियां भी आएंगी तो कोहरा भी आ, तो ऐसे में क्या जरूरी सावधानियां हो जाती हैं जो एक सारथी को अपनानी चाहिए?
1: बेशक, देखिए सारथी को सबसे पहले तो ये अपना वाहन लेकर निकलता है तो उसे ये पता होना चाहिए अगर उसके पास चार पहिया वाहन है तो, कि उसकी गाड़ी की इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट उसके अंदर है या नहीं। पहले चेक करे अपने कूलेंट को, उसके बाद वो चेक करे अपने इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल होता है, मोबिल ऑयल, कि उसको गेज निकाल कर देखे वो पूरा है या नहीं। अगर वो नहीं है तो गाड़ी रास्ते में भी जाम हो सकती है, वहीं की भी जाम हो सकती है। उसके अलावा देखे गियर डालने हैं उसे तो गियर डालने के लिए भी ऑयल होता है, गियर ऑयल चेक करे। स्टीयरिंग ऑयल होता है, स्टीयरिंग ऑयल चेक करे। ब्रेक मारने के लिए ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल चेक करे। जो हवा से बातें करता है तो उन टायरों में कितनी हवा है, कितने पाउंड हवा है, 35-40, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। नाइट्रोजन है, ये सादी हवा है तो इसके बारे में उसे पता होना चाहिए। इन सब के अलावा अगर वो बारिश में निकलता है तो उसके पास एक आलू तो होना ही चाहिए। आप उसे शीशों पे अगर लगा देते हैं तो आपका पानी सीधा नीचे की तरफ आ जाता है और उसके वजह डॉट्स चिपक जाते हैं, बिंदी वो नहीं होती, क्लियर विजन हो जाता है। इसके अलावा आपका शीशा साफ होना चाहिए, आपके वाइपर चलते होने चाहिए। अगर अंदर आप सांस की वजह से अंदर शीशे पर दिखना बंद हो जाता है तो थोड़ा सा शीशा खोल सकते हैं या अपने साथ में उसका हीटर चला सकते हैं या एसी ऑन कर सकते हैं जिससे कि शीशे के अंदर जो भी फॉग आ रहा है वो खत्म होता रहे। इसके अलावा अब आपकी जिम्मेदारी कि आप जब घर से निकले हैं क्या आप थके हुए तो नहीं है, आप ड्रंक तो नहीं है, कि आपने शराब तो नहीं पी रखी, या आप पता लगा गुटखा खाते हैं, गुटखा थूकने के लिए आपने शीशा खोला या दरवाजा खोला, एक्सीडेंट हो गया। अब जिम्मेदारी बनती है सड़क पर
0: जी।
1: सड़क पर सबसे पहले गति से ही दुर्गति है दुर्गति, इसीलिए गति आपकी प्रथम सुरक्षा होती है
0: जी।
1: दुर्घटना के कारण चार, नशा, नींद, मोबाइल और तेज रफ्तार। इस छोटे स्लोगन को याद रख लीजिएगा, एक हृदय में बसा लीजिएगा कि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। दुर्घटना से देर भली, सर सलामत सब सलामत, ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं, सीट बेल्ट लगा के रखते हैं, क्योंकि सीट बेल्ट के साथ ही अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपके जो एयर बैग्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते। हमारे जितने भी उसको जो सिग्नल मिलता है कि एक्सीडेंट हो गया उसे पता ही नहीं लगता, इसीलिए आपको सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। जब भी आपके एयरबैग खुलते हैं आपको सुरक्षा प्रदान होती है। बात करते हैं फॉग की
0: जी।
1: ये मैंने अभी तो अंदर वाले फॉग की बात करी, अब बाहर वाले फॉग की, वो तो अचानक हो सकता है, इसलिए अचानक वाले के लिए आपको जरूरत क्या है, आपके पास फॉग लाइट होनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: अब देखिए कि हर गाड़ी में फॉग लाइट हो ऐसा तो आवश्यक नहीं है, तो इसलिए जरूरत है कि आपकी गाड़ी के अंदर एक पीले रंग की पन्नी और टेप होना चाहिए, एक सेलो टेप और पीले रंग की पन्नी आप साइड में लगाइए, उस पर टेप चिपका दीजिएगा पन्नी पर, आपको पीली रोशनी का मतलब आपको नजर आने लगेगा। लेकिन लोगों की आदत क्या है कि वो हेडलाइट को ऊपर की तरफ रखते हैं, लो बीम पर नहीं चलाते, हाई बीम पर चलाते हैं। अगर आप फॉग में अपने गाड़ी की बीम को लो कर लेते हैं तो आपको बड़े आराम से नजर आएगा। अभी भी नजर नहीं आ रहा तो आप शीशा खोलिएगा और आपके बीच में डिवाइडर के पास एक सफेद रंग की पट्टी बनी होती है
0: जी।
1: उस पट्टी को देखते हुए शीशा खोलकर 5-7 की गति से चलते चले जाइएगा। राइट तरफ चलना है, आपको डिवाइडर की यानी वर्ज की तरफ चलना है, कच्चे की तरफ वाहन नहीं चलाना, क्योंकि कच्चे की तरफ कई बार कोई वाहन खड़ा हो सकता है और दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं
0: जी।
1: ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं जो आपको उस फॉग में बचाती हैं। आपकी गति कम होनी चाहिए, हम लोग कॉन्वॉय बना के चलते हैं, गति 50-60 की होती है, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा NHAI पर या एक्सप्रेस वे पर कि 25-26-50 गाड़ी एक दूसरे से टकराती चली गई, तो उनसे बचने के लिए आपको गति पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक।
0: तो दोस्तों, सही गति और सही दूरी आपकी जान बचा सकती है और जो भी सड़क पर चल रहे हैं उनकी भी जान बचा सकती है। सर ने बताया कि आपको लेफ्ट साइड में नहीं जाना है अगर ऐसी कंडीशन है, क्योंकि वहां पर कोई गाड़ी पार्क भी हो सकती है और हो सकता है कोई पैदल यात्री भी अपनी यात्रा पर निकला हो।
1: दूसरा, तो पार्किंग जला के चले, चारों तरफ की लाइटें जली होंगी, ब्लिंक करती है पीली लाइट, तो दूर से हमें नजर आ जाता है कि कोई आ रहा है।
0: चल रहा है स्पेशल टॉक शो चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी के साथ। लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी RJ वंशी के साथ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं।

0: जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
3: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं स्पेशल टॉक शो। हमारे गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार शर्मा के साथ। आप एक चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं और हमसे साझा कर रहे हैं यातायात सुरक्षा से संबंधित कुछ बातें।
1: इसी तरह से अगर आप आंधी तूफान में फंस जाते हैं तो दुपहिया वाहन हो चाहे चार पहिया वाहन हो, आपको किसी भी होल्डिंग के नीचे अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करनी। होल्डिंग गिर सकता है, किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़ी करनी, किसी भी ऐसा कोई लाइट का बिजली का खंभा उसके नीचे नहीं खड़ी करनी। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको हर तरह से बचा सकती हैं। दूसरे, अगर आपकी गति बहुत है, NHAI पर कई बार एक पशु जिसका नाम नील गाय है वो अचानक आता है और आपको लील जाता है, इसलिए आपको हर बात को ध्यान रखना है। अपनी गति अगर आपकी ज्यादा हो जाती है 120 की गति के बाद आपका विजन जो है टनल विजन हो जाता है, आपको साइड नजर नहीं आती, आपको सिर्फ टनल की तरह नजर आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है अपनी गति के बारे में। दूसरे, अगर आप सोए हुए नहीं होते तो आपका माइंड सो जाता है, हिप्नोटिज्म की एक स्थिति बन जाती है। आपके हाथ पैर गाड़ी चला रहे हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन आप सो चुके हैं, हिप्नोटाइज स्थिति बन जाती है। इसलिए अपने साथ थर्मस में चाय लेके चलें, बच्चे हैं तो आप उनसे बात करते रहें, पानी है आप रोक कर अपने छपके लगा सकते हैं आंखों पर। किसी भी तरह से आप अपनी जान नहीं बल्कि सामने वाली भारतीय से प्यार करते हुए राष्ट्र प्रथम का नारा रखते हुए चलेंगे, दुर्घटना आपके पास नहीं आएगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो अभी हमने जाना कि आप किस तरीके से घरेलू नुस्खे से इस चीज से अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आपके शीशों पर मिस्ट जम जाती है, फॉग जम जाती है, या फिर बरसात में आप किस तरीके से अपने शीशों पर जमा होने वाली एक धुंधली परत को हटा सकते हैं, तो अपने गाड़ी में, अपने अगर दोपहिया वाहन पर हैं तो अपने साथ बैग में किसी आप एक आलू को लेकर जरूर चलें और उसको आप मिरर पर अप्लाई कर सकते हैं। सर, क्या ये हेलमेट के अंदर भी हम लगा सकते हैं ताकि उसके अंदर जो हमारी ब्रीदिंग जो निकलती है उससे एक धुंधपन आ जाता है?
1: BIS मार्क हेलमेट के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसके अंदर आपकी हवा को बाहर निकालने का सिस्टम है।
0: अच्छा।
1: उसके अंदर एक स्विच है, अगर आप उसे कर देते हैं तो वो आपकी हवा बाहर निकल जाती है, फॉग आपके हेलमेट पर नहीं आती। दूसरे, डबल हेलमेट है, हेलमेट के अंदर शीशा भी डबल है उनमें।
0: अच्छा अच्छा।
1: ये अंदर की तरफ है, आपके स्पेक्स की तरह आ जाता है गॉगल की तरह, उसके ऊपर दूसरा है, आप उस वाले ऊपर वाले शीशे को हटा सकते हैं तो भी आप अपने वाहन को चला सकते हैं, सुरक्षित पहुंच सकते हैं। एक ही बात, गति पर आपका नियंत्रण सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको रोड साइंस के बारे में पता होना चाहिए। NHAI और एक्सप्रेस वे पर कई बार हमारी वाहन खराब हो सकता है, हमारा पेट्रोल खत्म हो सकता है, उस जगह पर भी हमें पूरी सुविधाएं प्राप्त है, बशर्ते हमें पता हो, अवेयर हो। आप कहीं पर भी गाड़ी खराब हो जाती है तो आपको किलो दो किलोमीटर एक वो बना होता है, जैसे कि पहले टेलीफोन बूथ होते थे, टेलीफोन का निशान बना होता है, आप अपने वाहन को वहां पर रोके, उस वहां पर जाकर एक बटन दबा दें तो पता लग जाता है कि 1033 वाले नंबर पर जो NHAI का टोल फ्री नंबर है कि आप किस जगह पर खड़े हो। अगर आपको पेट्रोल खत्म हो जाता है आपको पेट्रोल मिल जाता है, किसी परेशानी के लिए आपको टोल फ्री नंबर 1033 को भी डायल कर सकते हैं। आपको सुरक्षित रखना ही हमारी सबकी पहली जिम्मेदारी है।
0: सर, जैसा कि अभी आपने बताया 1033 के बारे में, क्या ये जो हमारे जो लोग परेशान हो जाते हैं, अगर मैं बात करूं टोइंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: कौन सी सर्विस मैम?
0: टोइंग सर्विस।
1: हाँ बिल्कुल, टोइंग सर्विस बिल्कुल, उनके पास टो करने के लिए व्हीकल होते हैं, अदरवाइज उनके पास दूसरी एम्बुलेंसेस भी होती हैं।
0: अच्छा।
1: वो हर तरह की सुविधा आपको देते हैं। आपने अगर टोल दिया है तो आप पूरी तरीके से उनके इंश्योरेंस में आ जाते हैं, किसी भी तरह की दुर्घटना में आपको पैसा तक प्राप्त होता है, मिनिमम 5 लीटर पेट्रोल भी आपको मिल जाता है पेट्रोल पंप तक जाने के लिए।
0: तो जरूरी है कि आप जागरूक रहें और अपनी गति पर ध्यान रखें। जैसा कि सर ने बार बार बोला है कि गति अगर सही रहेगी तो दुर्गति तक आप नहीं पहुंचेंगे, तो गति को सही रखें और दूरी को भी बनाकर रखें,
1: लेन ड्राइव का बिल्कुल ध्यान रखें
0: जी।
1: अगर 6 लेन में चल रहे हैं तो आपको अपनी लेन में चलना है।
0: चल रहा है स्पेशल टॉक शो चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर मिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी के साथ। लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी RJ वंशी के साथ।

0: कल है आधी रात है।
1: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
4: हेलो पार्थिवंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है तब से मैं सुनने लगी हूँ, और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। स्पेशली आपका मतलब आर्यवंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।
5: आँखों ही आँखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया।
6: Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं स्पेशल टॉक शो। हमारे गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार शर्मा के साथ। आप एक चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर हैं और हमसे साझा कर रहे हैं यातायात सुरक्षा से संबंधित कुछ बातें।
1: लेन बदलने के लिए आपको आगे पीछे देखना है, आपको शीशे आगे पीछे देखने के लिए होते हैं और इनकी सिस्टम भी होता है। अगर थ्री लेन रोड है तो उसके अंदर ऊपर वाली लेन जो है वो उन जो 100 से ऊपर की गति के लिए उनके लिए है। बीच वाली जो है मिड लेन जिसे बोलते हैं वो कितनी है 60 और 70 के लिए। अगर आप उससे नीचे गति पर है 50-40 पर है तो आप तीसरी लेन में नीचे वाली लेन पे काम कर सकते हैं। कई बार हम लोग गति हमारी 40 है और हम लोग हाई लेन पे चल रहे हैं तो पीछे वाले को परेशानी होती है। इसीलिए अगर कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति है जो 60 से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है अपने वाहन के आगे और पीछे ई लिखवा ले एल्डर, जिससे पीछे बैठने चलने वाले को पता लग जाए कि ये वृद्ध आदमी है। वो अपने उस चीज से बच जाए जो रोड रेज होती है।
2: जी।
1: बताना चाहूंगा वंशी, रोड रेज में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हम एक दूसरे से अननोन होते हैं लेकिन वो मुझे आगे क्यों नहीं निकलने दे रहा, इसी बात से गुस्से में आकर हम लोग अपने वाहन से उतरते हैं, कई बार हथौड़ा मार देते हैं, चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं। तो इससे रोड रेज के अंदर ही भारत के अंदर बहुत सारी दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है।
2: बहुत सही आपने बातें बताई। इतने ज्यादा संख्या में हमारे इंडिया में एक्सीडेंट्स होते हैं और फिर भी लोग जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है और छोटी छोटी लापरवाही उनको भारी पड़ जाती है और इवन उनको उनके साथ नहीं बल्कि जो उनके साथ चल रहे हैं सड़क पर, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसीलिए आप खुद भी सतर्क होकर चलिए और दूसरे की सुरक्षा का भी आप ध्यान रखिए ताकि वो भी परेशान ना हो और आप भी परेशान ना हो और घर पर आप शाम में सुरक्षित पहुंचे और बिल्कुल स्वस्थ पहुंचे।
1: तो देखिए, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मतलब मैं इस बात को और बताना चाहूंगा। अचानक आपने सवाल नहीं करा लेकिन मेरे पास है, क्योंकि
2: जी
1: हम लोग अपने आप को तो बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाले को नहीं, जो भारतीय है। हाँ। जो अन्य भारतीय है हम उनको नहीं बचाते। इसी को संज्ञान में लेते हुए जो हम इंश्योरेंस की बात करते हैं,
2: जी
1: इंश्योरेंस हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव करा लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है, लॉ ये कहता है कि आप कोई भी इंश्योरेंस कराएं या ना कराएं लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज द मस्ट फॉर योर एंड योर व्हीकल।
2: ओके।
1: थर्ड पार्टी का मतलब सामने वाले व्यक्ति को इंश्योर्ड अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वाहन को सड़क पर लेकर नहीं निकल सकते। थर्ड पार्टी का मतलब सामने वाले व्यक्ति अगर घायल होता है या मारा जाता है तो उसके अंदर आप भी सुरक्षित हो गए, क्योंकि अब आपको नहीं लड़ना कोर्ट में, वो कंपनी लड़ेगी। तो इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना अपने वाहन को घर पर ना निकालें, क्योंकि घर में सुरक्षा देने के लिए होती है हमारे पास माँ, लेकिन वाहन पर होते हैं तो सुरक्षा देने के लिए होता है हमारे पास बीमा।
2: जी,
1: इसलिए माँ और बीमा के बारे में जरूर ध्यान रखें, आप हमेशा सदैव सुरक्षित रहें।
2: बहुत सही बात आपने कही कि माँ और बीमा दोनों ही आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और बिल्कुल आपको ये प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस टॉक शो को अभी हम यहीं थाम लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम सर से मुलाकात करेंगे और बाकी के विषयों पर बात करेंगे। बाकी आपके कोई सजेशंस हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर है हमारा 9639012111। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर भी और वहां पर जाकर अपनी कोई भी बात हमसे साझा कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप आए हमारे स्टूडियो में। आपसे बात करके बहुत, मैं कहना चाहूंगी, मन प्रफुल्लित हो गया है और जानकारी क्योंकि आपने इतनी सारी दी है ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है क्योंकि मेरे ज्ञान में भी बहुत इजाफा हुआ है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर, जाते जाते जो हमारे लिसनर्स हैं या जो छोटे बच्चे हैं जो जिद करते हैं कि हमें भी वाहन चाहिए देखा देखी के चलते, उन लोगों के लिए या जो हमारे पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देश के आने वाले कल को रिलेट करते हुए माँ भारती की सेवा में समर्पण के साथ सिर्फ हम बात करें अपने जीवन की, जान की, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। इसलिए आने वाले कल को स्वर्णिम करने के लिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि स्वस्थ रहें, रोकें दुर्घटना, यही हमारा बल होगा। और यदि सुरक्षित आज है अपना तभी सुरक्षित कल होगा। वंदे मातरम, जय हिंद। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। मैं वाकई कोई कहे ना कहे, लेकिन मैं दोबारा रेडियो पर आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहूंगा। जय हिंद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और दोस्तों आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अंत तक हमारा टॉक शो सुना और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप यूं ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और सड़क पर जब जा रहे हैं तो ये विश्वास के साथ जाएं कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ दूसरों की जिम्मेदारी भी लेकर चल रहे हैं। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।

0: अमा मियाँ पान खा के तो मजा ही आ गया। अब एक काम करो, एक बढ़िया सी सिगरेट दे दो जिसे पी के कलेजे में ठंडक पड़ जाए।
1: अरे क्या बात है मियाँ, लगता है 20-25 लाख वाला बीमा करवा लिया है या लॉटरी लग गई है।
0: नहीं भैया, बीमा तो नहीं कराया है, पर काहे?
1: आप जिस तरह से तंबाकू और सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं उससे जल्द ही आपके घर में भयानक मेहमान आने वाले हैं।
0: भयानक मेहमान कैसे होते हैं भैया?
1: अरे जैसे कैंसर, कुमार, दमा रानी और टीबी।
2: जी हाँ, पान मसाला खाना व धूम्रपान करना जानलेवा है। इससे आपको कैंसर, अस्थमा, चर्म रोग, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग और टीबी हो सकता है। तो आज ही एक कदम बढ़ाएं अपनी सेहत की तरफ। आओ ये संकल्प करें, धूम्रपान को बंद करें।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के

जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, और जैसा कि आपको पता है ये कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नाम की किताब पर, जिसे लिखा है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने। वो कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उन्होंने ही हमारे सुभारती आजाद हिंद रेडियो को नारा दिया राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। आज के भाग में हम बात करेंगे कार्य का सम्मान को लेकर। दोस्तों, परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं अपनी किताब के माध्यम से। वो कहते हैं कि याद रखें, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम का अपना महत्व है। समाज को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति और हर कार्य का योगदान होता है। उदाहरण के लिए अपने शरीर को देखें, प्रकृति ने आपके शरीर में विभिन्न अंग बनाए हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। क्या

कह सकते हैं कि अमुक अंग का काम छोटा है। सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार हमारा समाज होता है। समाज के संचालन के लिए विभिन्न लोग विभिन्न कार्य करते हैं, तभी समाज, परिवार और देश चलता है। किसी भी काम को हीन भावना से या हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हर काम को सम्मान के साथ देखना चाहिए। किताब के माध्यम से डॉक्टर साहब हमको समझाते हैं कि आप अपने स्कूल के सफाई कर्मचारी को देखिए, वो अगर अपना काम ना करे तो स्कूल गंदा हो जाएगा, क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? एक बढ़ई को देखिए, वो आपकी मेज, कुर्सी और फर्नीचर बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर वो अपना काम ना करे तो क्या आप आराम से बैठ पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे? आप बिजली के मैकेनिक को देखिए, यदि वो बिजली की रिपेयर ना करे और बिजली चली जाए तो क्या आप अपना कोई भी काम सुलभ तरीके से कर पाएंगे भला? हर कार्य, चाहे वो बढ़ई गिरी हो, बिजली का काम हो या सफाई का या कोई भी काम, सबका अपना महत्व है। जब आप ये सोच विकसित कर लेते हैं तो आप सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं बनते बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। जी हाँ, एक सिविक सेंस वाला नागरिक। आगे किताब हमको समझाती है, सिखाती है, क्या आप कभी अपने घर में झाड़ू लगाते हैं? क्या आप कभी अपने घर में अलग अलग जगहों पर, विभिन्न जगहों पर जमी हुई धूल की सफाई करते हैं? क्या आप अपने स्कूल की सफाई में अथवा अन्य कार्यों में वहां के शिक्षकों और कार्यकर्ताओं की सहायता करते हैं? क्या आप कभी अपनी कॉलोनी के पार्क की सफाई स्वयं करते हैं या उसकी सफाई में कोई सहायक बनते हैं? क्या आप अपने छोटे कपड़े स्वयं धोते हैं? क्या आप कभी अपनी माताजी या भोजन बनाने वाले कर्मी की भोजन बनाने में मदद करते हैं? क्या आप अपनी कमीज में स्वयं बटन टांग सकते हैं, लगा सकते हैं? क्या सिलाई कढ़ाई बुनाई में आपको कुछ आता है? क्या सुबह उठकर अपना बिस्तर स्वयं लगाते हैं, बंद करते हैं? क्या आप कभी सब्जी स्वयं धोते हैं, छीलते हैं या काटते हैं? क्या आप अपने घर में उपलब्ध भूमि या जमीन या गमले में कभी कोई सब्जी, किसी के बीज बोते हैं और उसमें से निकले हुए पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं, उससे उपजी हुई ताजी सब्जी लाकर अपनी माताजी को या पिताजी को देते हैं? क्या आप खाना खाने के बाद अपने बर्तन स्वयं चौके या रसोई में धुलने के लिए रखने जाते हैं या मेज पर ही छोड़ देते हैं? क्या आप अपने वे बर्तन जिसमें आपने खाना खाया हो कभी खुद भी धोते हैं? क्या आप बाजार से अपने घर का सामान लाने में अपने पिताजी या माताजी की सहायता करते हैं? क्या आपकी मेज टूट जाए तो क्या आप उसे खुद ठीक कर सकते हैं? यदि इन सभी बातों में से आप कुछ भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं करते तो आज से ही शुरू करें। आप कह सकते हैं कि इन कामों को करने के लिए तो आपके घर में अलग अलग कार्यकर्ता काम करते ही रहते हैं। यदि ऐसा है तब भी आप उनका हाथ बटा सकते हैं। ये सब करने से आप आत्मनिर्भर बनते हैं। स्वयं काम करने का महत्व क्या होता है दोस्तों? व्यवसायिक कार्य क्यों सीखने चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई के साथ साथ ये व्यवसायिक कार्य सीखने से क्या आवश्यकता है, लेकिन ये जान लीजिए कि जब भी आप व्यवसायिक कार्यों जैसे बढ़ई गिरी, प्लम्बिंग या बिजली का काम सीखते हैं तो आप अपने को अपने और दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इतनी सारी बातें जो मैंने अभी यहाँ पर आपको किताब से पढ़कर बताई, दोस्तों जरा एक बार सोचिए, जो आपके बड़े बुजुर्ग थे, आपके माता पिता थे, पुराने जमाने में टीवी हो, रेडियो हो, घर में प्रेस हो, फ्रिज हो या कोई बिजली उपकरण हो या अलमारी हो, सेफ हो, स्टूल हो, टेबल हो, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता या दादा वगैरह सब खुद से ठीक कर लिया करते थे, जबकि वो न बढ़ई थे, न मिस्त्री थे, न बिजली ठीक करना जानते थे। वो थोड़ा थोड़ा कार्य पहले जमाने के लोग सभी करते थे, पर आज के जमाने में हमको लगता है कि हम भला कोई दूसरा काम क्यों करें? नहीं दोस्तों, आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी कुछ स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए। राष्ट्र अनुभूति किताब में परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको सिखाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जिस

की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ी सी ही देर आपके घर में कोई छोटा मोटा काम करने के लिए कोई व्यक्ति आता है और अच्छे खासे पैसे लेकर जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है, वो अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं। लेकिन अगर छोटे मोटे काम करना आप जाने, जैसे आपके पिताजी आज भी प्रेस ठीक कर लेते हैं, रेडियो या टीवी ठीक कर सकते हैं, आज भी वो घर के छोटे मोटे कार्य खुद कर सकते हैं, हर काम के लिए वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, वैसे ही आने वाली पीढ़ी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आपको आज के खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना की ये कड़ी कैसी लगी जरूर बताएगा। आपकी फीडबैक दीजिए 9639012111 पर या हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से भी कमेंट करके, मैसेज करके हमें बता सकते हैं। फेसबुक पर भी आपको हमारा पेज मिल जाएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। जय हिंद। ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: विश्व भारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्या

0: समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले। 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर
1: दवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किट और के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि आपको पता ही है, यह कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नाम की पुस्तक पर, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। वो कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का नारा भी उन्होंने ही दिया।

ये किताब हमको सिखाती है अपने देश से प्रेम करना। दोस्तों, जैसा कि आजकल आपने खूब सुना होगा सिविक सेंस के बारे में, यानी एक नागरिक का आचरण, एक चरित्र कैसा हो, एक अच्छा नागरिक किस प्रकार का होना चाहिए। यह किताब हमको सिखाती है कि देश का निर्माण केवल मानचित्र की वक्रीय रेखाओं से नहीं होता, उसका एक चेतना लोक भी होता है जो नागरिकों, व्यवस्था संचालकों और राजनेताओं के ईमानदार प्रयासों से सक्रिय हो व्यवस्था संचालकों और राजनेताओं के ईमानदार प्रयासों से सक्रिय होता है। इस चेतना लोक में उस देश की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और गौरवशाली प्रसंग और इतिहास सम्मिलित होता है। भारत की मूल संस्कृति सदैव सनातन रही है। ये सनातन संस्कृति का ही प्रभाव है कि आज भारत में संपूर्ण विश्व के सभी मतों को मानने वाले लोग पूरे मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह संस्कृति सर्वग्राह्य संस्कृति है जो

मानव और मानव के मध्य की भेदक रेखा को समाप्त करती है। जहाँ जहाँ इस संस्कृति का नुकसान हुआ है, वहाँ वहाँ सामाजिक स्थिति बद से बदतर हुई है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान इसके उदाहरण रहे हैं। वर्तमान में बांग्लादेश सजीव उदाहरण है। यदि हम सुख शांति से जीना चाहते हैं एवं विकास करना चाहते हैं तो सनातन को बचाने की आवश्यकता है। सनातन संस्कृति अथवा धर्म है क्या? सनातन किसी पूजा पद्धति या कर्मकांड अथवा पारलौकिक मान्यताओं के मकरजाल में उलझी कोई व्यवस्था नहीं। सनातन वे भाव हैं जो सृष्टि की रचना के साथ आए एवं जब सृष्टि रहेगी तब तक उन्हीं भावों के आधार पर रहेगी। वे भाव है प्रेम, करुणा, मैत्री और समानता। सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें उपयुक्त सभी भाव हों। धर्म तो केवल सनातन ही है, बाकी सभी कहे जाने वाले कथित धर्म तो केवल संप्रदाय या मत ही हो सकते हैं। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक है। गणतंत्र के चार स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सूचना संचार प्रणाली, जिसे हम सुविधा के लिए सम्मिलित रूप से मीडिया भी कह देते हैं। इन सभी संस्थाओं की कार्यशैली वर्तमान में परिष्करण अथवा आमूलचूल सुधार चाहती है। दूसरी ओर वर्तमान में आम जनता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के दलदल में फंसी हुई है, निकलना ही नहीं चाहती। देश के विषय में सोचने का इनके पास ना तो समय है और ना ही इच्छा। चीन में वर्तमान सत्ता हमारी कथित स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुई। आज चीन एक विश्व की शक्ति बन चुका है और हम अपनी पहचान एवं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी देश प्रेमियों को इससे चिंतित होना चाहिए और इस समस्या के समाधान की खोज करनी चाहिए। अपनी सामान्य बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सभी समस्याओं का मूल कारण ये है कि हमें अपने देश का ना तो सही इतिहास बताया गया और ना ही इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि हम ये समझें कि हमारी सोच सबसे पहले देश के प्रति होनी चाहिए, बाकी जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र तो बाद में आते हैं। हमारा मूल मंत्र राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम होना चाहिए था, जो कि नहीं है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं राष्ट्र चेतना कार्यक्रम, जो आधारित है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी की लिखी पुस्तक राष्ट्र अनुभूति पर। इसी पुस्तक से जो अंश मैंने अभी आपको सुनाया, जो मैं समझता हूँ इस पुस्तक से कि सर्वप्रथम हमें अपने देश के प्रति सचेत होना चाहिए, अपने देश के बारे में सर्वप्रथम हमको सोचना चाहिए। पुस्तक के लेखक हमको ये समझाना चाहते हैं कि देश सबसे पहले होता है। हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं और जो भी कार्य करते हैं, हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति सोचना होगा। चाहे आप ठेला लगाते हो, आप मजदूर हो, आप डॉक्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप छोटे से छोटा कोई कार्य या बड़े से बड़े कोई धुरंधर कार्य भी करते हो, तब भी सर्वप्रथम आपका ये कर्तव्य, आपका ये धर्म बनता है कि सबसे पहले हमें हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ये प्रयास कर रहे हैं समझाने के लिए कि अपने देश के भावी कर्मचारियों को अपने देश का

इस कार्यक्रम को भी बनाया गया है। इस कार्यक्रम का आधार है राष्ट्र अनुभूति। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सुभारती आजाद हिंद रेडियो की इस खास पहल में आप भी जुड़िए और आपके विचार शेयर कर सकते हैं 9639012111 पर। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिसॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिसॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिसॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।
6: हेरे आँख में स्याही और नजर को ढाली वही मार गई यकी हेरे का

रोकन लग्या भाई। उसने मेरे प्रति बहुत हमदर्दी करी, मेरे को टाइम दिया, समय के अनुसार वह आई। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया, बड़ा उसका शुक्रगुजार।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ। जय हिंद।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: नुपली हो मेरे कहते क्या करवाने।

आवे मलाई ज्यादा गर्म करया जासे। श्याम हुई जब भीख बखत पे मटकी बीच भरया जासे। दही बेलो के मक्खन काढ़ ले फिर खाली हाथ।

Lolia. Rai Halka, Guru Lolia, Her Khali.

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा।

आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

और आखिरी कली में लेखन महोदय ने बहुत सोच विचार करके सोची कली में इन गाँवियों के बारे में

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय हिंद।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

हेर आख्यम स्याही और नजर को डाली वही मार गई यकी हेर का

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के

0: ओ मेरी सासू की भर लाई पानी।
1: आज तक ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो। ए सेठानी नीर बनन चलेगी आज ना जाऊंगा ना गई तो पूरी बन ठण कर जाऊंगी।
0: तेरे के न्यू जान में बिजली पड़े है तू के नहरिए जागी नुए चली जा।

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जय हिंद वंदे मातरम सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आप सुन रहे हैं, मैं हूं वास्तु कृष्णा और यह है कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जी हाँ, यह है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की। ये नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से चुलबुले बच्चे, ये क्यूटी पाई आपके, जिन्हें आप कभी लड्डू कहते हैं, कभी गोपाल कहते हैं, तो कभी चीकू भी कहकर पुकारते होंगे, है ना। उस नन्ही सी जिंदगी की जो जन्म लेते ही हमारी पूरी दुनिया बदल लेता है, उसी की बात करेंगे आज हम। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो परिवार में खुशियां आती हैं, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी शुरू होती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बच्चा कितना बड़ा हो रहा है, सवाल यह है क्या बच्चा स्वस्थ बढ़ रहा है, क्या उसका दिमाग सही तरीके से विकसित हो पा रहा है, क्या उसे पर्याप्त पोषण मिल पा रहा है, क्या उसकी आंखें और कान ठीक हैं, क्या उसका शरीर मजबूत हो रहा है, क्या वो अपनी उम्र के हिसाब से सीख और समझ रहा है, और क्या उसकी मां भी स्वस्थ है। क्योंकि याद रखिए, स्वस्थ बच्चा बनाने की शुरुआत मां के स्वास्थ्य से होती है। तो आइए आज जन्म से लेकर लगभग 10 साल की उम्र तक के बच्चे के स्वास्थ्य की पूरी यात्रा को आसान भाषा में समझते हैं सेहत सही लाभ कई में।

कदम आपका एक बार फिर से सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति। दोस्तों, क्या बच्चा स्वस्थ बढ़ रहा है? क्या उसका दिमाग सही तरीके से विकसित हो पा रहा है? पोषण मिल रहा है? आंख, कान, पैर, हाथ सब ठीक है, मजबूत है? क्या अपनी उम्र के हिसाब से बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है? ये सब जिम्मेदारियां एक पूरे परिवार की होती है ठीक समय पर पता करना। साथ ही साथ ये भी कि उसकी माँ भी क्या स्वस्थ है भी या नहीं। बच्चे के जन्म के समय की बात करते हैं। सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद के जो टाइम होते हैं, जो दिन होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नवजात बच्चे को जन्म के बाद गर्म रखना, माँ और बच्चे का जो त्वचा से त्वचा का संपर्क है वो बनाना, जल्दी स्तनपान शुरू कराना, संक्रमण से बचाव और बच्चे की सांस और सामान्य स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। WHO नवजात की आवश्यक देखभाल में इन बातों को महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए बच्चे के जन्म के बाद केवल घर ले आना ही पर्याप्त नहीं होता, माँ और बच्चे दोनों की प्रसव के बाद जांच और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात आती है माँ के दूध की। दोस्तों, बच्चे के जीवन के शुरुआती महीनों में माँ का दूध उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोषण होता है। WHO और यूनिसेफ की सिफारिश है कि बच्चे को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराया जाए और पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। 6 महीने के बाद सुरक्षित और पर्याप्त पूरक आहार शुरू किया जा सकता है और स्तनपान 2 साल या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है। इसीलिए नवजात को बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना आवश्यक जांच पड़ताल के पानी, शहद या दूसरी चीजें मत चटाइए। इस तरह की परंपराओं से बचना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चा घर पर पहली बार आता है तो मोहल्ले के कुछ लोग आकर ऐसी बातें बता देते हैं कि बच्चे को ये चटा दो, वो खिला दो। ऐसे चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, डॉक्टर की ही सलाह माननी चाहिए। और हाँ, अगर माँ को स्तनपान कराने में परेशानी हो रही है, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है या बच्चा बार बार उल्टी करता है, तो स्वास्थ्य कर्मी से या अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले। अब बात करेंगे हम माँ की। हम अक्सर बच्चे की चिंता में माँ को भूल बैठते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद माँ के शरीर को आराम भी चाहिए, पौष्टिक भोजन भी, पर्याप्त पानी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। माँ को लगातार अत्यधिक कमजोरी हो, बहुत ज्यादा रक्त स्राव हो, तेज बुखार हो, सांस लेने में परेशानी हो, बहुत तेज सिर दर्द या दूसरी कोई गंभीर समस्या नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और एक बात बहुत ज्यादा जरूरी, माँ का मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का हिस्सा होता है। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद थकान और भावनात्मक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अगर माँ लंबे समय तक बहुत उदास रहे, किसी काम में मन न लगे, अत्यधिक चिंता रहे या खुद को या बच्चे को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार आए, तो इसे छिपाना नहीं चाहिए। परिवार को उसका साथ देना चाहिए और स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। WHO भी प्रसव के बाद माँ और परिवार को जानकारी, सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता देने के महत्व पर जोर देता है। अब ये जिम्मेदारी परिवार की भी बनती है कि जन्म के बाद सिर्फ बच्चे के चक्कर में नहीं लगे रहना, उसकी माँ का भी विशेष ध्यान रखना। मानसिक बदलाव भी होंगे, है ना, स्ट्रेस भी हो सकता है, एक माँ को तनाव भी हो सकता है, कई बीमारियां भी घर कर सकती हैं, तो माँ का भी उतना ही ध्यान रखना जितना बच्चे का रखना है।

0: सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ गई में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। यह है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। हम बात कर रहे हैं एक बच्चे के जन्म से लेकर तकरीबन 9-10 साल की उम्र होने तक उसका ध्यान किस प्रकार रखें, और बच्चे का ध्यान रखने के साथ साथ सबसे जरूरी हो जाता है माँ के सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये तो आपको पता ही होता है। अब नवजात बच्चे में किन किन बातों पर नजर हमको रखनी है इसकी बात करते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, बहुत ज्यादा सुस्त है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, बहुत तेज या असामान्य सांसें चल रही हैं, शरीर बहुत ठंडा या बहुत गर्म लग रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, दौरे पड़ रहे हैं, या बच्चे का रंग असामान्य रूप से पीला या नीला दिखाई दे रहा है, तो इंतजार मत कीजिए। नवजात बच्चे में बीमारी तेजी से गंभीर हो सकती है। ऐसे संकेतों में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर के पास जाकर संपर्क जरूर करना चाहिए। अब बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तब क्या करना है? दोस्तों, अब शुरू होती है एक नई यात्रा। 6 महीने के बाद सिर्फ दूध बच्चे की बढ़ती जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं रहता। 6 महीने के बाद इसीलिए उम्र के अनुसार पूरक आहार शुरू करना चाहिए, जैसे कि स्तनपान तो जारी रखना ही है। बच्चे के खाने पीने में धीरे धीरे अलग अलग पौष्टिक चीजें शामिल कीजिए। दाल, खिचड़ी, सब्जियां, फल, हल्के फुल्के अनाज, अंडा, दूध या अन्य उपलब्ध जो भी आपके परिवार में चलता है पौष्टिक खाद्य पदार्थ। और परिवार की जो स्थानीय या पौष्टिक चीजें होती है, ऐसा होता ना कि हर किसी के परिवार में अलग खान पान चलता है या हर स्थान पर हर जगहों पर अलग अलग चीजें होती हैं। ध्यान रखिए, परिवार में एक तरह का भोजन बनता है, लेकिन एक परिवार में नवजात बच्चा भी है, नौजवान भी है, बूढ़े भी है, सबका भोजन एक नहीं हो सकता। बड़े बुजुर्गों की पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं रहती, उनका भोजन अलग होना चाहिए, नौजवानों का अलग होना चाहिए, किशोरों का अलग होना चाहिए और नवजात शिशुओं का, बच्चों का अलग भोजन होना ही चाहिए। यह नहीं है कि आज आपने अपने घर में कुछ बना दिया तो बच्चे को भी, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को भी वही चटाते रहे। जी नहीं, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि छोटे नवजात बच्चों को आपको क्या खिलाना है। उसके शरीर और दिमाग के विकास के लिए पोषण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार की स्थानीय जो भी चीजें हैं, पौष्टिक चीजें हैं जो आप खाते हैं अपने घरों में, वो खिलाएं, उसी में से ढूंढ लें कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है। बच्चे को सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं देना है, उसका पोषण का ध्यान रखना है। अब आती है एनीमिया यानी खून की कमी की बात। बच्चों में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। बच्चा जल्दी थक जाए, कमजोर दिखाई दे, खेलने में रुचि न दिखाए, उसकी त्वचा या आंखों के अंदर का हिस्सा ज्यादा पीला दिखाई दे या उसका विकास अपेक्षित गति से न हो रहा हो, तो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, बिना जांच या डॉक्टर की सलाह के बच्चे को आयरन की दवा खुद से नहीं देनी है। जरूरत के अनुसार डॉक्टर जांच और उपचार तय करेंगे, उसके बाद ही कोई दवाई खिलाई जाएगी। अब बात सिर्फ शरीर की नहीं,

0: दिमाग की भी है। दोस्तों, बच्चे का स्वस्थ विकास केवल वजन बढ़ने का नहीं होता है। बच्चा कब बैठता है, कब चलता है, कब बोलना शुरू करता है, अपनी बात कैसे समझाता है, दूसरों से कैसे जुड़ता है, कैसे खेलता है, कैसे चीजों को समझता है, ये सब उसके विकास का हिस्सा है। हर बच्चे के विकास की गति थोड़ी अलग होती है, इसीलिए कंपेयर मत कीजिएगा कि फला बच्चा तो, उनका बच्चा तो बहुत जल्दी बोलना शुरू हो गया, बहुत जल्दी खड़ा होना शुरू हो गया, या वो ऐसे करता है वैसे करता है। हर बच्चा बिल्कुल अलग है, तो किसी से कंपेयर मत कीजिए। लेकिन अगर बच्चा अपनी उम्र के अनुसार लगातार पीछे ही खिसक रहा हो या पहले से आती कोई क्षमता खो रहा हो, तो उसे इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। समय पर जांच और शुरुआती सहायता बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। WHO के अनुसार शुरुआती वर्षों में बच्चे को अच्छा पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण, प्यार, देखभाल और सीखने के अवसर मिलना उसके विकास की बुनियाद होते हैं। इसीलिए बच्चे को सिर्फ मोबाइल पकड़ा देना सीखना नहीं होता दोस्तों, उससे बात कीजिए, उसकी कहानी सुनिए, वो बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, वो सब सुनिए, उसकी बातों को सुनिए और फिर उसे कुछ कहानियां सुनाइए, उसे अपनी बातें बताइए, उसके साथ बातें कीजिए, उसके सवालों का जवाब दीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ चित्र भी बनाइए, अगर वो कोई मस्ती करता है तो अपने बच्चों के साथ मस्ती भी कीजिए, गाने उसको सुनाइए, कविता सुनाइए, लोरी सुनाइए, और हाँ, अगर वो कुछ आपको सुनाना चाहता है तो सुनिए भी, और उसे सुरक्षित वातावरण में चीजें खोजने और सीखने का मौका दीजिए। बच्चे का दिमाग सिर्फ किताबों से नहीं, बातचीत और अनुभव से भी विकसित होता है। अब 2 से 5 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाती है, इस उम्र में बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं। इस समय पोषण के साथ साथ नींद, शारीरिक गतिविधि, खेल, भाषा और सामाजिक व्यवहार पर भी ध्यान देना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा किसी चीज की जिद कर रहा है तो आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, सारा दिन वो मोबाइल ही देखता रहे, ये जितने कार्टून और जो बच्चों की वीडियोस होती है वही देखता रहे, उससे दूर रखना है। बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, अगर जरूरत पड़े आप खुद उसके साथ खेलिए, उसके खेलने के सामान लेकर आइए, बहुत ज्यादा मोबाइल मत देखने दीजिए, बच्चे को हर समय मोबाइल या टीवी के सामने मत बैठने दीजिए, इसके बजाय उसे उसके साथ खेलिए, उसके साथ बातचीत कीजिए, उसको कहानियां सुनाइए, परिवार के साथ खेलने का मौका दीजिए, दूसरे बच्चों को साथ खेलने का मौका दीजिए, हाथ धोने की आदत डालिए, साफ पानी पिलाने की आदत डालिए, साफ और सुरक्षित खाना कैसे खाना है ये उसको बताइए, शौचालय कैसे यूज करना है, हाथों को कैसे धोना है ये सब उसको सिखाइए, और हाँ, टीकाकरण का रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखिए, टीके की कोई खुराक छूट तो नहीं गई है, स्वास्थ्यकर्मी से पूछकर आगे की पूरी योजना तय करिए।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

जी हाँ, यह सेहत से ही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हमने बात की है यहाँ पर कि अपने नवजात बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, तकरीबन पैदा होने से लेकर 9-10 साल की उम्र तक कैसे कैसे हमको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके भी कोई विचार है तो हमारा नंबर है 9639012111 पर, इस पर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके कुछ भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ये खास प्रस्तुति है स्मार्ट NGO की।

ऐसे ही प्यार से, जैसे ये गाना भी आपने सुना, ऐसे ही प्यार से अपने बच्चों से बात कीजिए। दोस्तों हमने बात की पैदा होने से लेकर तकरीबन 5 साल तक हमारे बच्चों के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अब बात करते हैं 5 साल से 10 साल तक के बच्चों का ध्यान कैसे हमको रखना है। दोस्तों ये वो उम्र है जब माता पिता को सिर्फ पढ़ाई के नंबर नहीं देखने चाहिए। बच्चा स्कूल में कैसा महसूस करता है, उसकी नजर साफ है या नहीं, उसे सुनने में कोई परेशानी तो नहीं, वो बार बार सिर दर्द की शिकायत तो नहीं करता, अपनी क्लास में ध्यान लगाने में लगातार कठिनाई तो नहीं हो रही, बच्चा बहुत जल्दी थक तो नहीं जा रहा, बार बार बीमार तो नहीं पड़ता, उसका वजन और लंबाई उसकी उम्र के अनुसार लगातार बढ़ रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी क्या बच्चा खुश है। अगर बच्चा लगातार चुप रहता है, डरता है, स्कूल जाने से बचता है, अचानक पढ़ाई में गिरावट आती है, व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाई देता है, तो केवल डांटने के बजाय उससे बात कीजिए और जरूरत पड़ने पर उसके टीचर से या डॉक्टर से भी मदद लीजिए। और सबसे खास बात दोस्तों हमारी बेटियों के बारे में, बेटा हो या बेटी वैसे बात बराबर होती है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बेटियां थोड़ी नाजुक होती है, मतलब वो थोड़ी कोमल स्वभाव की होती है, वो जल्दी डर जाती है, उन्हें कम डांटिए। बेटियां बड़ी कोमल होती है तो उनको समझाइए, प्यार से बात कीजिए और उससे बात करेंगे जितना ज्यादा उसके स्कूल में क्या हुआ, उसके दोस्त या सहेलियां कौन है, क्या उसकी पढ़ाई में चल रहा है। खास तौर से हमारी बच्चियां अपने मोबाइल में क्या देख रही है ये पिता को पता होना चाहिए, पता तो लड़कों का भी होना चाहिए, दोनों का ही बराबर मात्रा में ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा अगर एफर्ट आपको करने पड़े तो कीजिए, बच्चों से पीछा छुड़ाने की कोशिश मत कीजिए कि बच्चे को स्कूल भेज दिया आप छुट्टी, ऐसा नहीं। बच्चा जब गाड़ी से उतरे ना, स्कूल से वापस आए, तुरंत उसके गले मिलिए, उसको ये एहसास कराइए कि आप उसका इंतजार कर रहे थे, घर पर उसका इंतजार होता है, उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कराइए। उसके स्कूल में क्या हुआ, क्या बातें हुई, ये सब उसके साथ बातें कीजिए, उसके दोस्तों ने क्या कहा, टीचर्स ने क्या कहा, बच्चे को वो अपनापन दीजिए कि उसको लगे कि हाँ उसके माँ बाप ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो चलिए अगर आप ऐसा करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए। आज से ही एक अच्छे नौजवान बच्चे के किशोर अवस्था में पहुंचने तक माँ बाप को अपने बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनके अच्छे खान पान का ध्यान रखना चाहिए, उनकी मित्र मंडली कैसी है ये ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या खेलकूद पसंद है वो ध्यान रखना चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में जा रहा है ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप माँ बाप हैं, आपको सब कुछ पहले से ही पता है। ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम टीबी के रोग की बात करेंगे। टीबी का जो रोग होता है बहुत भयानक होता है। पुराने जमाने में न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे टीबी रोग के बारे में, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। आज भी अवेयरनेस तो है, लेकिन शर्म कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन के भीतर घर करी हुई है। अगर किसी को टीबी हो जाता है या उसके परिवार में टीबी का पता चल जाता है, तब भी लोग इस बात को किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनका बहिष्कार हो जाएगा, उनके बच्चे की शादी नहीं होगी, लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, है ना, ऐसा उनको लगता है, जबकि ये सच नहीं है। दोस्तों, टीबी अब कोई ऐसी बीमारी नहीं रही है कि जो जानलेवा हो, अगर टाइम पर आप उसकी दवा लेना शुरू कर देते हैं। दवा पूरी तरह से मुफ्त है, सरकार के जो पूरा का पूरा सिस्टम है, तंत्र है, वो आपके लिए लगा रहता है। इसमें सरकारी डॉक्टर्स हैं, निक्षय टीम है। इसके अलावा जैसे सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम के माध्यम से स्मार्ट एनजीओ भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचाता है। हमारे आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से हम भी यहां पर लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सरकार भी नित नए आयोजन करती रहती है। अब ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है दोस्तों कि कैसे आप टीबी को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने आज बात की है मेरठ जिले के ट्रीटमेंट सुपरवाइजर डॉक्टर विशाल राणा जी से। पूरे जिले में कहां पर दवाइयों का वितरण किस प्रकार होता है, कहां पर आयोजन हो रहा है और किस तरीके से मरीजों की सहायता होगी, ये सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त हुई। तो आइए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से।

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा
1: देती है? बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी एक ट्रीटमेंट चलता है, वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, अगर कोई जानना चाहे टीबी के बारे में, ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिये, वैसे तो पूरे मेरठ को

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और हाजिर हो चुका हूं यहां पर आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए, आपको अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाने के लिए, आपकी फरमाइशों को सुनने के लिए, कुछ नॉलेजेबल बात, कुछ अच्छी बात आप तक पहुंचाने के लिए। और हाँ, कोई अच्छा सा फैक्ट मेरे पास होता है, कोई हेल्थ रिलेटेड टिप होती है जो आपको हेल्दी रख सके, तो वो भी आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप अगर कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें तो कह सकते हैं, बता सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर आकर। आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम के नाम से हम आपको मिल जाते हैं। जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

शेरों वाली मैया के दरबार में भक्तों का तांता लग रहा है। प्रेम और भक्ति के रंग में हर कोई रंग रहा है। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है। इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें।

पंकज एक अच्छी वाली बात, सफलता मेहनत के रास्ते पर चलने से मिलती है। मतलब सिंपल और साफ सा इतना है कि अगर आप किसी भी काम को करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी एम है, आपका जो भी लक्ष्य है आप समझते हैं, उसे पूरा करने के लिए जब तक आप पूरी लगन से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप वहां पर पहुंच ही नहीं सकते, सफलता आप पा ही नहीं सकते। तो इसीलिए कुछ भी आपको पाना हो उसके लिए मेहनत करें, मेहनत के रास्ते पर चलें। वेल ये हुई एक अच्छी वाली बात। एंड इस अच्छी वाली बात के बाद अभी हम क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

नवरात्रि की रातें खुशियों की सौगातें, मैया का आशीर्वाद जीवन की हर बात में। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो। रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रही हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। अच्छा, पॉलिथीन को लेकर कितने सारे कैंपेन्स चलाए जाते हैं कि पूरी तरीके से कैसे भी पॉलिथीन जो है बैन हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी खुद की तरफ से भी शुरुआत करनी होगी। शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? जो चीज पॉसिबल है कि कपड़े के थैले में आ सकती है, उसे कपड़े के थैले में लेकर आए, पॉलिथीन की डिमांड ना करें। क्योंकि पॉलिथीन से देखा जाता है पशु वगैरह जो होते हैं, जो आवारा पशु होते हैं, काऊ हो या बफेलो हो या कोई भी हो, वो अक्सर गलती से इन्हें खा भी लेते हैं, और खाने के बाद उन्हें क्या नुकसान हो सकता है ये शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो पॉलिथीन के लिए थोड़ा सा सोचें और जितना हो सके उतना कम से कम यूज करें। इनफैक्ट यूज ना ही करें तो ही अच्छा है। इसकी जगह आप जूट का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं या कपड़े का बैग, थैला, जो भी आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, पॉलिथीन को छोड़कर कुछ भी। वेल, बात अच्छी लगे तो मेरी बात सभी के साथ साझा जरूर कीजिएगा, ठीक है? बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जगदम्बे माँ तेरी महिमा अपरंपार, चरणों में तेरे हमारा संसार। तू ही है जीवन का आधार, नवरात्रि में तेरा हो जयकार। आजाद हिंद रेडियो 90.20 FM और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.20 FM, आपके अपने पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती। अगर मन उदास है तो छुपाइए मत, बात कीजिए। आप अकेले नहीं हैं। अगर डिप्रेशन है तो उसे दूर भगाइए, अपनों से जुड़िए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। अच्छा, केले के पेड़ पर केले लगते हैं, पपीते के पेड़ पर पपीते लगते हैं और अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगते हैं। अब ये सब सुनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि तुमने नया क्या बताया, ये तो हमें पहले से ही पता है। बट नया अभी आपको मैं कुछ ऐसा बताता हूँ जिसे सुनने के बाद आप शायद चौंक सकते हैं। जी हाँ, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे पेड़ के बारे में जिस पर 40 तरीके के फल लगते हैं। दरअसल अमेरिका के एक प्रोफेसर ने ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग करके एक ऐसा पेड़ उगाया है जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 40 अलग अलग तरीके के फल लगते हैं। एंड इस ट्री का नाम है ट्री ऑफ 40। आप चाहें तो इसके बारे में इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं, फोटोज वगैरह इसकी सभी कुछ देख सकते हैं। ऐसे ही फैक्ट आप भी चाहें तो मेरे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सजा है दरबार, सजी है झांकी, माँ दुर्गा के चरणों में दुनिया सारी झुकी। इसी संदेश के साथ आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। शो चल रहा है गूंज। समय की बात करूं तो ठीक 6:18 और 12 सेकंड हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। और अभी 340 के बारे में थोड़े समय पहले मैं बात कर रहा था, मतलब एक ऐसे पेड़ के बारे में जिस पर 40 तरीके के फल लगते हैं। अब वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है नॉर्मल तरीके से देखा जाए, लेकिन कुछ अध्ययन किया गया था, कुछ तैयार किया गया था ऐसा एक पेड़, और उसके बारे में बता रहा था आपको। एंड नवरात्रि भाई कल से शुरू हो चुके हैं, आज दूसरा नवरात्रि है। और आपने फास्ट रखा है या नहीं आप मुझे बता सकते हैं, और किस तरीके से आप क्या खाते हैं, कैसे मनाते हैं नवरात्रि, उसके बारे में बता सकते हैं। कई लोग ऐसे होता है कि रोज़ाना मंदिर जाते हैं, कई लोग ऐसे होता है रोज़ाना घर पर ही रहकर अपना फास्ट रखते हैं, वहीं पर पूजा करते हैं और पूरे दिन नहीं खाते हैं, सिर्फ शाम के टाइम में खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दो एक बार खा लेते हैं दिन में फल फ्रूट। और आजकल तो ये भी हो चुका है कि व्रत की नमकीन आती है, चिप्स आते हैं, तरह तरह की चीज़ें आती हैं, और ये सब चीज़ें महिलाएँ ज़्यादा जो हैं व्रत रखती हैं। एंड अब रामलीला भी काफ़ी जगह पर लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि नवरात्रि के बाद ही दशहरा भी आता है। सो सारे त्यौहार अभी इस धीरे धीरे अब इस मंथ हैं, फिर इसके बाद दिवाली भी आने वाली है। देखा कितनी सारी चीज़ें हैं, और मुझे मतलब जो जो याद आता रहता है मैं ऐसे ही आपसे बात करता रहता हूँ। बाकी आपसे भी मैं कहता हूँ कि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए, बताइए। और हाँ, मतलब घरों में सफाई वाला अभियान अभी शुरू हुआ है या नहीं उसके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है ऐसे वाले टाइम पर ही लोग सफाई वगैरह करना शुरू करते हैं, घर में पेंट का काम जो है वो शुरू हो जाता है। तो जो कुछ भी है बताइए, थोड़ा सा बातें हो जाएंगी इसी बहाने आपसे, और कहीं पर ट्रैफिक लग रहा है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपको सुनाता रहूँगा, जाइए आप कहीं मत, सुनते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए हमारे और आपके अपने आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। अगला ट्रैक आ रहा है सजदा फ्रॉम द मूवी 21।
1: 1, 2, 3, 4.

मैया तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो जीवन का हर दुख दूर हो जाए। नवरात्रि के पावन पर्व पर तेरे ही गुणगान हो जाए। इसी संदेश के साथ आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

अच्छा ट्रैक था। एंड मूवी भी यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। किस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लाइव अभी आपसे बातें हो रही हैं, 6:33:45 हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। आप सुन रहे हैं आज़ाद हिंद रेडियो और यस मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। बातें मैं कर रहा था कि भाई नवरात्रि अभी चल रहे हैं तो क्या तैयारियां हैं, पेंट वगैरह का काम क्या शुरू हो चुका है या अभी पोस्ट प्लान कर रखा है कि मतलब नवरात्रि गुजर जाए उसके बाद देखते हैं, क्योंकि दिवाली भी आने ही वाली है अगले महीने और अक्टूबर ये चल रहा है, फिर नवंबर दिसंबर और साल को भी टाटा बाय बाय। तो इसी पर मैं बातें कर रहा था तो हमारे साथ जुड़ी श्वेता और लिखती हैं कि नहीं अभी पेंट वगैरह का काम नहीं हो रहा है लेकिन हम करने जा रहे हैं आफ्टर नवरात्रि। तो जैसा मैं बोल रहा था कि या तो पोस्ट नवरात्रि होता है या नवरात्रि के टाइम में भी कुछ लोग शुरू कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ ये और होती है कि वाहन खरीदना बड़ा शुभ मानते हैं लोग, है ना, अपना स्कूटर खरीदना, बाइक खरीदना, कार खरीदना, तो ऐसा भी कुछ प्लान है तो उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और मौसम की थोड़ी सी बात कर लें तो भाई बारिश हुई है ना, कल शाम में बारिश हुई है, मेरठ में भी हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है, यानी कि ओले भी पड़े हैं। हाँ जी, तो आपके यहाँ भी ऐसा कुछ रहा है तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर हूँ, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपको सुनाता रहूँगा, बीच बीच में आता रहूँगा और आगे कोशिश करूँगा आप कुछ नॉलेजेबल बात आपसे मैं करूँ। एंड किस टॉपिक से रिलेट करती है ये आप गैस कीजिएगा। फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ। अभी फिलहाल जो ट्रैक चलने वाला है ये है दिल को तू मेरे दीवाना लगता है, श्रेया सिंगल की वॉइस में। एंजॉय कीजिए।

जगमग जलती ज्योत, मन में श्रद्धा का भाव, मैया रानी के चरणों में झुकते हर कोई यहाँ। इसी संदेश के साथ आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना 45 पंकज। चलिए जी, अभी एक क्विज हम आपसे कर लेते हैं और क्विज का जवाब अगर आपने हमें सही दिया और सबसे पहले दिया तो इसके लिए आपको मिलेगा आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। तो ध्यान से क्विज सुनिएगा। तो क्विज में आपको मुझे बताना है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, मतलब कि किस साल में हुई थी। बस इतना सा आपको मुझे बताना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास जवाब है तो आप मुझे अपना जवाब भेज सकते हैं 9639012111 पर कॉल या मैसेज करके, या आप हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर भी जा सकते हैं जो कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से होते हैं। और हाँ, आपका जवाब मेरे पास सबसे पहले आना चाहिए और करेक्ट आना चाहिए तो ही आपको मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। तो देर मत कीजिए, फटाफट से अपना मुझे जवाब भेजिए। आपके जवाब का मैं वेट करूंगा म्यूजिकल ब्रेक के दौरान।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बेंदास आर शे पंकज। और अभी थोड़े टाइम पहले आपसे मैंने एक क्विज किया था और इस क्विज का जवाब आपको मुझे

0: तोड़ लगे जाट नू
1: लगी तेरी तलब ये कैसी कांटों में गुलाब जैसी तेरे किए दिन ना बाद रातें मेरी ये सैलाब जैसी तस्वीर जली जो रखी संभाल देख मेरा हाल जहां जहां तूने चूमा था वही वही

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाए सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

माँ का रूप निराला, भक्तों का है सहारा। नवरात्रि में माँ के गुण गाकर होता है हर दुख दूर सारा। इसी संदेश के साथ आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना पेंदास आरशे पंकज। अच्छा, हम जब भी यहां पर आते हैं तो आपसे ढेर सारी बातें कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप हमसे बातें करना चाहें, हमें कोई सजेशन देना चाहें, हम तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहें या अपने किसी फेवरेट ट्रैक को सुनना चाहें तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ही को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको अब मैं बता ही देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना होता है कि आपको कनेक्ट होना होता है हमसे हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। हम फेसबुक यानी कि मेटा पर भी हैं, और हाँ, इसके साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। वहां पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। और हमारे स्टूडियो का भी नंबर होता है, जो कि होता है 9639012111। इस पर भी आप कॉल या मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम, सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

बुलिया, अभी अभी आपने सुना और लाइव मैं आ ही चुका हूँ यहाँ पर आपसे बातें करने के लिए। बाकी बता दूँ मैं, अगर आप नहीं जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और इस वक्त आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM के माध्यम से आप मुझे सुन रहे हैं। समय की बात करूँ तो ठीक 7:45 और 18 सेकेंड हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। और आपसे मैं कहता रहता हूँ कि आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं, कुछ अपडेट देना चाहते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, फरमाइश भी कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए आपको आना होता है हमारे सोशल हैंडल्स पर, आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिल जाते हैं। फिलहाल थोड़ा सा ट्रैफिक अपडेट मेरे पास आई हुई है, तो वो मैं आप तक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जो अपने मेरठ के ट्रैफिक से रिलेट करती है। मवाना में थाना तिराया और सुभाष चौक के पास ट्रैफिक बताया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ काशी टोल प्लाजा पर भी ट्रैफिक बताया जा रहा है उसके पास, और प्रतापपुर टोल प्लाजा और दिल्ली रोड माधवपुरम गेट के पास भी ट्रैफिक बताया जा रहा है। बाकी और कहाँ ट्रैफिक है, अगर आपकी आपको इसकी अपडेट है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। 9639012111 मेरे स्टूडियो का नंबर होता है, कॉल मैसेज जो चाहे आप कर सकते हैं। और अगर सोशल हैंडल्स पर आकर अपने संदेश अपने मैसेज हम तक पहुंचाना चाहें तो वहां पर भी आ सकते हैं, आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों जगह पर हम आपको मिल जाते हैं। चाहिए कहीं मत, जुड़े रहिए, सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अगला ट्रैक यार नहीं मिलेगा।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920085।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और तेरा मेरा प्यार अभी आपने सुना सज्जन अदीब की वॉइस में। बाकी मैं कहता रहता हूं कि आप अपनी कोई फरमाइश करना हमसे चाहते हैं, अपनी कोई फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास जो फरमाइश पहुँची है ये है जी रनिंदर जौहर की, और ये सुनना चाह रहे हैं बापू जिम्मेदार जस्सी गिल की वॉइस में। तो आइए इनकी फरमाइश को पूरा करते हैं और प्ले करते हैं बिना देर किए बापू जिम्मेदार जस्सी गिल की वॉइस में।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

कोरबी की वॉइस में सुनखी अभी अभी आपने सुना। बाकी मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंदा सारे पंकज और शो चल रहा है गूंज, जिसे आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। भाई फरमाइश जोन ये चल रहा है और मैं कहता रहता हूं आपसे, आप अपना कोई फेवरेट ट्रैक सुनना चाहते हैं, बोले तो पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फरमाइश लिखकर मुझ तक पहुंचा सकते हैं, हमारे सोशल हैंडल्स पर आ सकते हैं आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिल जाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पर। फिलहाल सत्या की रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई है जो बैकबोन सुनना चाह रही हैं हार्टी संतु की वॉइस में, तो आइए इनकी फरमाइश को पूरा करते हैं और प्ले करते हैं बैकबोन। बाकी आपको पता ही है मैं क्या कहूँगा, अगली बात वो ये कहूँगा कि जाना कहीं नहीं है, बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं, इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: प्राप्त कर सकता है।
1: देखिए वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल

सब जगह टीवी की जांच के इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो ममाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरगना।